ताइबंग पानबबु सेंबिरिबी ताइबंग पानबगी थवाई ओइबी पुमनमक्की अवांगब फंबाल द फमलिबी लैमरेमबिनी थौजालगी लाइज खिकपीरो नचाना नाइसिंग द हे इमा लैमरेल सीदबी

सचिन जिगर अरिजीत सिंह अमदि अमिताभ भट्टाचार्य आग्या पुन बखोंजल द गीत की आहान बखुदोलोइना इसे मताबिरे खुदोल गे अनि सुबदा मुक लानथोक चरी जैस्लिन रॉयल अमदि अरिजीत सिंह आग्या पुन बखोंजल द गीतमा

0: 아두부 마두나떼 바르타 버릇 방식이 사계기 마이다 아나 시바낭나 개트럭이와 식빵 톡방암나바 시기다막다 아이니 와리바니 짜이리바니 아짜 어둑뚝까짜그러바 타먹고 돈 크라바 주디스티 이르기만 아우나 숙돈 크라바 농가 크라벌리 슈헤바 반덕이닝 타우 맞자나 마시다 강래 알전 낭아시까나노
1: 어허 짜짜라게 야우직 막 짜짜라게 야뭉깐나무 핫바 짜짜라
0: 마이코 나 학부 야문의 란판마디로 타라 빵드라바 염부 서둥부 농사기 막혀 떡가람나 프링프링 쏭랑신가니 아이 나문 강래와 아픔마마 나품도 하이겠다 그리스나 아준 남았다니 마샤암았다니 아마는 나라 아마는 나라연 분나 나라나라한 하이는 콩나리 나라와이바 준낭나 빵암다바 타박가도 나라연 노이바 그리스나 빵 톡바다 가리수와 가이바나 있대 아준 낭기나 토우빵 톡바다바야대 낭기와석 가이바야대 마람디 낭나와석 가이바다 버릇 방식이 아디 부르스싱 둥글아까다 반도업 자디싱 뿐나 능글로이는 노록다 누미타나 레디마크 일룩가 도리바니 누미타나 빨리바마크
2: 다드마
0: 아드나 마시 톡다나바 나라연 노이바 크리스나다 능기 간디바도 신나카라
2: 간디
0: 신나카라 와두가 아준 간나고 크리스나 하랄로
3: 나이코 파타 나하는 나밋 이켄 까두나 나야 크락크락 씩라가 탕쿰덕이 탕 샛불락나리바디 까리기노 능기 미지앵가두나 까나아다노 라만 쿰닝바기 농사소 홀리바두나 까다이다 까다이 아시다디 땀티르바깐나두디 레이티나
4: 바가반 바가반
3: 능기 밥기 후시엘바 미지앵가두나 밥미하이바 토이딩 마카이 아마따 마사다 박드라바자타 샛트루 다르마라주 리스티르기 마사다 사가다 우금지앵리 마두 까리기노
4: 바가반 와샥낙바 와샥낙바 바가반
3: 와샥낙바 쭈미 낭 와샥낙가다바니 아두부 마두기 아트카리노 낭이바 나밋 식리바 나카 람리바 탕 마두기 아트 캉디에이
0: 한껏째게 바가반 마두기 아트 마학는 와샥낙니 조디스테이르부 하뚜나
3: 오 마야암바부 하뚜나 마나우나 와삭낙바 까리노 농망다나 브르자타르바코 말레마시부 이기 이파우케 룩신크라브라 누미타드 막톡리바 아두가부 반도업 오르준기 타모이다기 마야몽 하르가 와삭낙닝라바 다르마산티기 마락타 파우키 마이샤칼락라브라 파르타 오르준 Nang tinahay daba misak oire. Orjon nang tinahay daba misak oire.
4: Bhagavan,
3: Bhagavan,
4: ay giran ngak piyune Bhagavan, ngaw raba ayin. Ay tawam kandre dev, pungaw ngaw kre, pumlan lan kre ne dev.
3: Masibu karino hai ba ay kandre. Ay bu shokano. Nang ay gi ikhong pay gano. Nang nang si tauri ba mitrang si karino Arjun.
0: He mahapranja, nanay hanggat jage prabhu, punamag nanay na tuan bani. Ay hap na inawi wasak nga aning badagi, mahak karnagalamba at sararoy drahay na kanjarudo na, mahak ki dolay ki subli senari ba, tamoy ki susarti, lanpang susarti, bagaban na hap na, nanay wasak nga kwisanuhay do na, Mahaki Gandhi wa ibu ngoda pitho kro pallure. Mahaki wa shakle. Mahaki Gandhi wa thadok lhai wa mi mahak ado haat gani. Adunani mahak na itat tatana wa shak ngakpa hai na murumurum sholi basi.
3: Murka asuk wa kalling daba tohi tohi de khang daba. Nangi na saagi swartha wa shak ngakpa du thungna na bagida mag guru hatya togi hai ba. Khangu. Nahak kang Arjun, ay kaung gi apien ba pangna na ba tawhei ba tawhei da ba yeng da duna indri gi pena na ba khak tawroi da bani. Pumna makhanta bhai ba shigi makhada hauna lan chat linga da bani. Madu nahak kang dre. Nang mi shani. Saadi lam ni ngay dita hing sa tau bani. Mabuk thalla ba di kai phao mi shok da ba. Masi nang kaore. Nang di sastra gyani li shu hai bani. देव विद्या नर विद्या की तुंग फम ओइब महाबाहु फाल्गुनी हायन फाउरी बनी जगत अछिद अदु द सुनत्तना पांडव की मिंचक के थोइब फिरान दी मयाम बनिंग मनि अदु बुंगसी दी अदु गुंब फिरान दु चिंग थरग पाप चेल बन खोंग पाक ने हेल्लबा नंग नत्रा दुर्जधोन की चैना कया चारक लिबा नमांग नत्र नंगी सो धर्मी द्रौपदी बुरा सभा ममांग दुसा सो नमफी मुनबा खांगम द्रव भीम सेन गे असाव मैरक्त कुरु सागई चाक्थे कन गे थोरांग लकलबद नयाम धर्मराज रिस्तिर गी जाथंग फंग दे हाय दुन नंग न खाव कि बनत्रा इथक चार व लैराय न तनिक तनिक खांग बगुम हौज थें खांग कया कया नसी फाव खांग लकलि बसे अर्जुन आइ खांगले नसा गी स्वार्थ सोक्त दुना खांग दुन लाकलि बन
2: दे
3: नसी दी नसा गी स्वार्थ सोक्त लबोय दो शेख पुमिन नब मयाम हाथ के हाय दन थांग सतुन चोंगसिल
2: देव
3: अदुगुम बनहाक पु अइन मरु बोइबा चलो चलो अर्जुन मफम मसिदगि नहाक लेरगनु
2: भगवान भगवान पंग लबन ननाय दामुक नयत पीरगनु ने देव नंदी भक्त उचालैव मूर्ख गि मूर्खता करम न पाखे कोकनि देव अर्जुन मूर्खन मूर्खता कोकन नव गीत शास्त्र तक पीखर बनी नाकन अदव देव कन्न कुप्लव पुखरी गी इमाय दो कंग हाइदुक लुई हाय बदु मंगाय अमुक अन्न कन्न कुप्शिन बगुम अर्जुन गी मूर्खो बगी वाकल्ल दो अमुक एक कुप्शल लईने गी थमोय बु देव अमुक तक हाइदुक पीखो अमुक तक चुखत पीगो ज्ञान गी मैरा अनमुक्ति कुप्शल लल्लरोय देव मुत चल्लरोय ने दयामोय
3: नहाक वासक नाक तब यारोय नया महात तब यारोय
2: नखों पाई दुने लई माई दु तुजरी अमुक कन वापम मधु पन वीरगन उबदे
3: नहाक वासक नाक तब यारोय मरम दिनंग न वासक नाक त्रबदी भरोत बंश की आदि गुरु सिंह पुनमक लुप लगनी नरोक तम मतम कुई नगी ओइना अदुन अर्जुन नंग नया महात तब यादी
2: नमजररोय देव नमजररोय देव
3: अयंबा अदुदि करिगि नख्वांग रगि थांग सटके तौरुरी वखंदि लिंगदना खंगले आइना खंगले नंग कैदोंगै रसु ngamlaroi धर्मराज गि मसार थांग थाबदि अदु अर्जुन हात तबदि यादि
2: दोयामो
3: क्षत्रियो बनंगि वसक ngak नब गुरु निंदा तौ धर्म बुसेयु नंगि थमोय द धर्म गि थौछिन द चैनिंग कि बकया खांग दुन लई कि बदो खंदुना पंदुन पंदुन सयु मधुमग्न धर्म बु हात पर सक्कनि अर्जुन
2: गुरु निंदा तौगतवा धर्म बुच्चैगतवा दे करम न इया शिकाकत कदब प्रभु ngamlaroi सुख ngam जररोय न देव वधु विशरुपति इथं आत्मा घात तौदन शीघ्र गे न देव थान शिना
3: आत्मा घात तौगे हायवा नथन तसी जरगे पाप अमगी मथंग द पाप अमा अर्जुन नंगा वसुम मसुम हेंगल लगले करीनो नंग नमुक साधु होय अमुक पापी होय अमुक चोरो नमुक बीरोन नरोन फायगन अर्जुन नंग नाइगोन द लंबी ताक पीयू कन बीयू हौजिक त हाय की बदाय अदुना अइन ताक लिब लंबी सित चल्लु अइन हाय बसी इल्लु गुरु हालु गुरु निंदा तो हात पग मानवनी खंग मतुंग द अइन नंगी प्रायचित तो बिगनी
2: प्रायचित तो बिगदवा
3: कीगनु निक्कनु गुरु निंदा तो हौजिमक धर्म बुचयु
2: भगवान दयामय नहक
5: नहक धर्मराज ने हाय नहीं नते नंदी पापी राज ने नंबु प्रंजा ने हाय नहीं नते मूर्ख ने ज्वारी ने अयम मनी पांग बनी मिनुषी खंग बनी नहक न धर्मराज ओयरम लबदी दुर्जधान की शरौ द शकुनी की कुतनीति द कन्नन मुक पद पांडव न मई रक्त लम लक्त अमुक न चाकनी ब अमुक न लंबोई बसा अमो वो दिल चही तरानी थोई बोंद चट कदरा अदु द नंगी न थाउ ना करी लेखी हिनाउ शाव ही त्रब नंगी ही थकत तोंग लिब पांडव शिंग अवाब की इपाक तक नंग में कन भी खीबरा हिरंब बाग कीमीर दादाये में भिन्न हाट की बनी द्रौपदी अर्जुन गी लिशुन फंगलक बनी भीमगी मपामोम न निंथौ लखा म चाय खाई की बने मधुद नंग निक तिल की दुन खांग की बनत्रा
1: अमुक पन्गे मदुन पेंद्र अर्जुन न खांद बोन में इथा की बगी मनावे न फंग खुशु खुलाई दोलाई शंख हौजिक पव पांडव के पांगल लो इधन लेरी मशी इकाई द्रा नंग धर्म चेन विकाय खंग मिशक अम ओरम लवडी देव भगवान ननाई काम गंद्रेन देव
3: मखा मखा ताकी गदमनी मधु गुरु निंदा तो वे यौद्री मधु न धर्म पुंगार हाथोक्त्री मखा ताको अर्जुन
1: खाता की गदबदे
3: माने अमुक सुहाय को
1: देव
5: मयदान अब की मथवाय कन्वी बगी मनाओ ही न पृथ्वी दंगक लव शवा मंदोप अमशारे मयदान अब मीलाय पुंडमत न कलक नरे मिता नरे मंदोप अदो नापु इंद्र पृष्ठ की निंथाऊ अमोहन निंथाऊ पंबाल थिंदोकले
1: मधुनश नंग पेन की ब्रा पेन की दे नंग सर्व भूमावती वो निंखी नंगी अपा मधु उधर नंगी ननिंग द थुंग न बाय दुन इचनी ना उपांदो एकोई मरी न माइकई मरी द दिग बिजाई चटके निंथाऊ कया के मरण मुन्नन कोंगत के शक्ति लेतन शक्ति साजिन नदर नंग राशे जिग्गतव किवनत्रा जैगदु द निंथौ लखाम न खोंग तुदुर नखा पोले या किबा लाई कोती कुंत्रा उंदे पावन नपम न नकक नोन किबा अदु अदु दिस नत्तन जोग मरी पुंशीरबा अवर कुबम फंगलबा लंका निंथौ राबोन नि मनाव विभीषण मक्न हिंचा वलखा तरा मरी गलोइन न अथेन पटकत्न न खुत न खोंग खरम किवनत्रा नन्न मदद चाव थक जगिवा खल्ल मदद तुक चै नोक निंग
3: तुक हाय को सही को गांग थको पाटा
1: दे दे सात सिंह के लोक ताई को शान शान दुन लेरम वही वही चान लेलम पांडव के हाय गत लब को नशी नोंग दोन खेत नुवा चिंगी ले चिंग दो लम मशा पुमो वाउरम पांडव न जाबो चंदो न लेते इंगल निंग थाउगी पिजोन शेत लब पांडव इधर निंग थाउगी पंबाल द पंबलर मशीबो मशीबो कलक प्लेरम लो यहाँ इन कंठ बंगम द बदगी नत्रा न हाक न कुरू द चाउबोरी सरू पायरु बदो मधु द न हाक न ज्वारी यम की मुट्टी लो उधर पंबलग पांडव मरी की हुमांग मन पांडव मरी की मथाउना न तालक पुष्णा लुपा लंथुम लो इन न नंगी शक ती नंगी राज्य शकुनी की चौबोर की कांखुन की मेरत उठ ओयन ओलन की बनत्रा मदद नंग पुंगा उंगा ओर दुन नंगी नपामों जेत ओय शक्लब पांडव मरीबु मिनाय वेरु चौहे न लंशन की बनत्रा कुरुदा खेत्रियो मचा मरी ये दुन मयाम की याथंगी हंजी सब गंदर मका चिक्न थरो थरो ओन की बदा कलक ई आ मतम मुडुडाय बॉय क्रेडको आई एम बॉय क्रेडको अरोय ब पोलोय की पोंथादा अरोय ब पोलोय की पोंथादा ताई बंग नंग पमियेंग ने येंग की देवता पुन मक नंग एकी नुंग सिट नुंग सा पाव लेप की द्रौपदी के हक तक की दमक
3: हाय उपाठ मधुमग्नी
1: देव देव निहत पा दाकु निशा चाव यू ठक पा ज्वारी कनान नगसी की मलंग पा नमक तसु ताऊ की द्रिव मताऊ नी महक ने लोई जब मिनाय नो भी पाव ज्वार द था दक पाए बसे अजबो मांग द लेरी व धर्मराज ने हरी व नुपाशित तनदी अशित तनदी द्रौपदी वो ज्वार द था दक की ज्वार द था दक की लंग शक्ति मिनाय नो भी आयन की प्रजा मांग दुशासन मशम लाख न सर सर चिंगल को कांग पाक न काउ की मफी लाख न चिंग की मसे मसे मिहत पने हिंचाव ओ दया मोई ननाई मकाता अब नमज दे न देव का पीरो का बाद देव का पीरो का बाद
3: पांगन बखेत्री नंग वसक नागले होगलू नयाम बुहाले नंग मयाम हाट पर नुपानी इनाक तक हंदो इखोंग पाए गनु नंग सोंग नब यादरे और जोन
1: प्रभु आई बुखाम नंद्रे कहियो बगे देव आई बुखाम नंद्रे आई कम दो बतारी बगे नंग न हाट लो हाय दुन हाट पर नत्रा प्रायचित्तो भी नहीं हाय के बदाय नत्र ने दे प्रायचित्तो विरोने मा प्रंजा
3: मयाम बहालन की बताई कर्ण हलन की बताए मानी कर्ण हटपदन प्रायचित मुनि खंग अर्जुन
1: हटकने कर्ण हटकने मसी अर्जुन शुद्ध मचा कर्ण हटकने

0: Áll! Ketti ápunamag! Hangmílan minak hasatál! Nakha innarakti krishna junmu asidalaira hanatakvang ambanupadura kannanamana chauna pigani.
1: Kavna bhava lingjiyalleva karna narunmayamadu tinto papamu tinto kati. Krishna arjunmu hatpanga ungadaba kulai adutta khandokho. Sailana parthadungi manakta pusinbigani nangbo. Madudanang nachekshin gadabadi ujit napal tauriwa aigatti bako kado. Kian kita napa madutani
0: madravel masih di nang madragi ning thawadu natre sagon cipli senna bani karnagi
1: hai budi
0: karna narathi
1: sailena sarathi adugi karna na napal tauri sutra macha karnagi sagol cipli madraraj na paire madude Sudrana Napal Jagoi Sari. Oh, Wissingi Mamanda. Khaakna khaakna noktiduna. Kudombi waangna thangmatuna. Mana matungi paugje libakko.
0: Ha ha ha ha. Ganna jingi lambagi Mamanda. Salla nakahana chayna batari vira.
1: Kari ingakna koko wapam no madusa. Adubu. Nungai ribadi, noning ribadi, anggades kini tahu pembal dah pemjerupana. Aiket ini apa napal kita anda niatna? Karisulah itu bersudra macam mana? Ketio macam ada, lagi kongren apa pamli bersini?
0: Madrabir, kan lagi ngasih bijoy pataka yang nambah dah, kari kalak kanjauri.
1: Kerum nu bijoy pataka yang ngadori.
0: Orjun buhatna.
1: Orjun buhatna. Madu ni, noning ni ba. Kibataki bawa pengakni minamba matanate jauh jani lamu ikum nangna orjun gimang nagi cian kipa Draupadi pabhuru bagi sayambol sawadugi lalauda cina kibani thau masasingi marakta karna nangsu amani Virat ki chanyam mitawa ki chaltu bagi kongpamda orjun gimang na kaino cianna rapasingi mamangda mangin tharakpado karna nangni kaungni Citra rod gandar mana nanggo, sedagi kaput sedagi cengkat kibam raju padi bibi kibam. Nangi nanggo terjodohan pagi pada nang nakah mengembra, nang nahat kini ayat nak kek nak kek nak nok tu nak napul kari bor jen nak tu nak kan kibra. Aduh kasih, or jen hal laga bijo ay pataka yungani. Nara iya tu nadi nok thok nok sena tu nak kya wani na layto ni mezra tu napul gikon thok. Apa apa nanti ngak ada orang ni, aduh ka, madra nih tau saya tadi, kuba krok krok kuduna, kek nak nok tu nih,
0: macamai, salon cipli sana beranu,
1: ay nang ya tengak loy, nang hai bi loy,
0: iya tengak loy, ay nang hai bi loy, syaratina rati ya teng illeroy daba,
1: saya la karnya ki syaratina ti. Durjodhon gi ayman nangi dolagi chupi pai nangi chupi scenery ba mata nung nun napal tauri khang amam balambi gi mera pai dna lamjin bire ba amada nasi nakhom na kaore ithak khor bai pa tiran bire ba hiran bu anga wa nang na jagam meti nang na napal tau dna ngau na lawri ba churo la do Cuirul nikau gunai natak pihon bisakta nang nak kantha dadna nang nak non mengamri. Panjal chandring eda panjal chand bagi harau kubak kubado. Aibu kariam nabani karn lauro. Sekson ngasi gilam pamse nangi bijoy ketu gi mauta duma ketu oira gada bani.
2: केतु अधुमक क्लेप लरे नाक नरम मूर्ख अजात शत्रु धर्म वीर गहचांगी सिंधन खिवा
0: मूर्ख दे नन्ने है अर्जुन लान थम दनोंसा लिसु हैवद परशुराम गुंब कन्नगी ममांगदा नंगि नयाम चोबोर हैवने लिरुम पाय जन चन लबदी मसादगी थुंगाईनी मथाई मांगनेगाई करी जुरिस्ती न मथाई मांगखि दबा भिम हिंखिबा सदे नकुन नान थक जीवा कन्न की लान बा मराय बक भगवन अरु मखैस खंज रखनी मतुन अरु बहुत जन नहते पांडव मरिय दिगुम कन्न की मकुत्त की नान थक न सब पंगम लाए हटकने नहक हटकने कन्न की अंगांग वरिंगे की वाशक पंग थकने
2: अदुम्ना नवमद जदानी मांग हन्न हन्न खौशाबदी ममल न काय काय न चारकलीव न पुंशिय दो लोयर गदबनी शुद्रमचा नंग न तत्तन नापल दाउदन ऐले यायन न पामों तिंग मन दुर्जदोन हौजिक पावमाती मृतूल योट के चंसिल लक्लब बावद कीवले इती वशनी तरी सुले इत्रव शाउचे पावन मकोईवु अंबा शारी सनम पंगुदा कीदन चेनरी पाइथोक नरी न कोई दी शाद के सहन तोले न कोई वो नंबला अगले है वो न कोई कंद्रे कंगो करना और जून से नंग नंबनु पार अब जिस हायो अधुगम पास कलागी सभा में आए द धर्मराज जुरिस्तीर की धर्म की योलिंग न मकों मकुट पुन्संगी दुना नंशा की ममांग नंग न करें कथाएं वंगांग पांडव मिनाएं हैं चेकीबा मिनाएं संथापी कीबा द्रौपदी की मापी मुन्ना नब वंगांग लीरो शूदना केक न नौ कीबा वंगांग सिंग द अब जिस हायो
0: कंग द वंगाहत तमंगायरे करीदगी कन्नन पांडपु नान न हनिंग हनिंग न हत्त दुन थमलक्पा चानिंग चानिंग न लेक लेक तुन थमलक्पा चा पोटकुम करीगी दमक्त पांडप मंगाबु कन्नन नशिभाव थमली ममांग द लेन दुन चानिंग ममिशक अदु ngairak लीवनी ममांग मक्त दा लेन दुना हनिंग ममिशक कन्नन ngairak ली मतम कुईन दगी कंग राज्जन मिसक अदो कनानो है बा जोड़वीर नवम कृष्ण की ममांग मक्त दनी अर्जुन नंग कन्न न हट कर बा
3: महारथी नंग वही नंग अशी भाव वीर रथी निहाय ने नगुन सहिता रखली दान वीर दता कन्न निहाय वसे ऐशु यारकली अदु वो नशी रितायों नरवर हाय निंगले लंबा की लंबा नतिक की नतिक लंबानो करीगी कलक थोली फंदा नंगु कनानो हाय भाई खांगी नंग चाकलेम चाबनी फिमन खुनबनी कुरु निंग थोदुना नंगु ममल पीदुना लई खब मिनायनी माबु पेन नब होन बद न सागी ममल खंगना नंग नंगाउरी अंगाउ संजाउ गुमना अकन नकन बनुंग जेंगदुना मची फेंगली मची हुक्तोकली नंगी नापन नंगु गंब पाथद इतत तत नंगांगजे चैजदुना नंगी मृत्यु कक्षिंजरी इताओ मुर्ख शिव हो जी मत पाए लो वचन ना
0: जय बिस्त जयरक्षण
4: चुम्मे एक मृत्यु लाख लगनी लूर बलान पम्मस डे गुरु न तंबी बलालों पुनम काव करे खुलाये मत निंशिंग करे
5: आयु पाखंग नाग ब्राह्मण मसारा
4: ये से कथा है देखना
6: गुरुदेव
5: ब्राह्मण वसो खांग करना
4: ऐ हक
5: नखुट भाव तिल्ल से चिक्त ने ई थोला बता ब्राह्मण न सो खांग कन मको आयु नंग ऐ मां दे उठ वगेरा
4: त्रियोनी
5: त्रियमसानी
4: त्रियमसानी
5: अधूरा वधी ऐ ने पीबा विशाब सिलो नथवाय तमालम दायदा मतमदा इन तंबी व खुलाए पुनमक लोई न काबो इसनो आधुगा नंग ये तमु खुबिये दो एवंदे पियो गुरु दक्षिणा होइना चक्र चलो प्रसुराम जी क्षेत्री में साधा खुलाए तंबीरो है वो असक नदु नंग नथवारे नंग मिनम मनी मिनम मंगा मनी अयो विशा बसिलो
4: ओ डे
3: भारती भाग दोलाई तो बुया थे दोलाई चका मिट्टी रूह
4: मिट्टू लाखलबा मिट्टू ब्राह्मण होम धेनु कप गुरुवगी अवश्याव खिंगलबा
5: नंग पाखं आईगे होम धेनु हानी बसे
4: ब्राह्मण डोलब कन्नाई ननी गुरुदेव परशुराम तक पीरक पास्त्र सांगे इंग साना जबनी मित विषन्न
5: अजताओ पाखं आईगे होम धेनु नंग हाले मध्य अविशाप पीरबनी नंग नंग नथवाय

0: निहोत्तिननी
1: भगवान ने प्रभु
0: अमुक सुहाय की के कन्न की मराय बक थी बसे महा खुलाय औराय बनी तेन संध्यान तौखी ममित उसिंदुना मधुद ब्राह्मण की लून थमजब संभी होम धेनु हाट की बनी मधु की अभिशाप ने हेन की खरे नेम तोन ओन थोक ने की खरे
1: कर्म अभिशाप
0: कन्ना नंग मायोक नब लान फम पिशुम लई नब यादरब मतांग नंगी दोलाई चका पृथ्वी मतान फादन थंब ओइशनु दोलाई थौब यारनु दोलाई थौब यादरब रथि न माई थी बदी इनेम तोन सोइद्रब
1: पुनमक थम खसी माधव पुनमक थम खसी इस जादी मसाद खुलाई चंगद बनी स्वरारेन की ब्रज चंगनाई दब पोक पदगी सागो नरक लब कवच किरीति कदाई द चक्रे प्रभु
0: वफम मसी मतंग तार गई नेम तोन नंगी थमोए दो फाव इंगु तप थो अर्जुन दी माम पांडुगी क्षेत्र द इंद्रराज की सुप्था है नी अधुन नशा अर्जुन की जाय फन बगी दमक नशा कर्ण की पोक पद की जाऊ जरक लब ब्रज चंद्र ब कवज कृति लौनम ब्राह्मण साधु ने इंद्रराज ने लौ ठोखर बनी अधुन कर्ण हाथ पदी इंद्रराज मसा मंगनी नेम तो नंग नक्ति
1: लान फम अदुद मनाउ न मयाम हलम दाई मतांग द करम तौखी भगवान न हाकती
0: खांगम खिरे रे इनेम तोन ओथोक न खांगम खिरे दा अदुगुम बई कटन नदु न मनाउ अर्जुन गी ते नदी मसाद तुबुम जैन पालक लबद सानब सब हाय ब साधु ओइ फेद चैना खांगम द्रब बई कटन नदु न लाउर इने अर्जुन अर्जुन मतुंग न निगम लक लोई को पाठ याम बगी अर्जुन नंग खंग लखि कनी को
2: बिजोय शंख खोंग बिदना पांडव की लांगम फिरान इबुंगो मग्न सिंखत अंतपुर द प्रजा मियाम गलोयना भीम अमदि सहदेव नोकन सिंह मना ngai दुनले
1: करना इमागे करना
0: धर्मराज तर्पण छांग ओ बिरे देना
2: भगवान पुनमकी तर्पण कत पलोय जा गुरु की मचिन मनाउ चाम द्रोणाचार्य गुरु की प्रिय तर्पण कत पलोय जा
1: लोय रे धर्मा तर्पण कट पपुन
2: लोय लोय रे इमा आई खोहिनी तेंगों तरानी पांगी तर्पण कट पपुन लोय लोय
1: बीर रथी सिंगी लुचिंबा महारथी कर्णगिशु कट खेदन इमादा
2: कर्णगी तर्पण कट की दे इमा
1: कर्णगी कट की दे
2: काउ की बनते निंसिंग निंसिंग ना काउ की दे इमा
1: करीगी नंग आजाद शत्रु नत्रा नंग बु धर्मराज हाई नव नत्र ने इमादा
2: इमा कर्ण से नहाक मशक खंग कर्ण पांडव को यक नव सिंगी मनुंदा तंथी ने यक नव ना पंजाव वंगांग कम जाओ हुन बने पांडव की पुंसीदा अवाब थेंखांग थेंखांग नंग लिवसे कर्ण मागी खुजिन दिने इमा
3: इमा करी नो इमा नखरब वाफम मुशे नशी की ताइबंग ना नापल चार व दुर्जय धौल ना नापल पांडव लेखा ताकि मिनाए वो इबा पुंसी लेन की पुनमक्त कर्ण मागी थविन सिन दुर्जधन शुतमचादु अर्जुन ऐगि इमांग तौगे हेव मतागुम ऐग लंबा यारण व कन्नद अंगदेश फंबाल थिंदोप हराउ मथोय का कि बने जोय धनी लाउ कि बने पुनम कशे कन्नमाबु फंजब द खे खे नोक्तन कुरुगि मचा चामन पांडोप्त खुदुम शिंकिब खुदुम मदोइमा कनान सिंहन बनो पत्र बम कन्नमान निने मागि तत् फोन करी कथम थोक जेनेइमा
1: धर्मा कर्णग लंबा पाखी बड़ा कुरुगी लान बुंदा
2: पाखी मा इहं नहं सहन की आईबु मागी मागी तेन यु सही थानो सही ना दिदगी हे न नावम हकी करेम न बुवा इसम पाई न चुन छलग मक्वांग दी थांग सकल नांग की
1: करी हाई की करी हाई रमे
2: नक्त थांग हेक यालम मन हे न फबने महाक न करेम न हाई की नथ की अंग लंबा पागनो चलो लान सिंग द पथारो इमा इकाई करे दा
1: ना कर्णगी माई थोंग दी ओ उब्र धर्म ममित नांग खिबरा मखा चिक खिबरा
2: तु कच्चबन मागी माई थोंग यंग हुदे इमा
1: नंग न यंग लम लबदी कर्णगी माई थोंग अदुदा मागी ममित अनी अदुदा 삐기 이라 젠마도 우렁가다 오바네
3: 그이 눈에 하이루시미마 마학네 라우라미 어준 마뚱나 낭닝암 락로이코 파르토 야마게 어준 낭 칸락키가니코 마시까리노이마 이마 이마하기 밑뜨기 삐기 이라 마두기 어타나까리노이마 깐나까나노 어준 까나노 두쪼미 타모이 니글레이 하이로 이마 통로네 낭기 빠콩에도 이마
0: 이냄돈 로올라가노 마이타나 와카이 크라바 마하비르 카르나 카나노 퐁독로이
2: 하이로가 와폭비 카르나 카나노 와칸기 나오라 베랑다 능시 하이타바 스토르기 마르타 모몬 록나 렙나바고 모리 프라티무르티에시기 미엥다 칼락 칸자오기 마미 상키드나 ngasi pando te thau jal gi ni nga mane yeng la bugu hai roi ma karna kana no
1: ma do ine mo kari o re sige ne prabhu
0: ine m ton yare matang chare hai do lo
1: karna se naya am bane ima gi garbha da gi pok chawa
2: karam nahi
3: na bu karna gu ya am bane
1: ima gi ibungo jodiste अदुगुंब महारथी कर्णादो इमान पोक्चब नयांब अहन्निने अहन इमान मावु योक्चब फंखिद्रब मराइब थेरब इच्चाने महागना हान्बद नखोईबु मनावने खंखिदबन नखोईगी मागन बगी मसक ओयरब थबक्षिंग से तवखिबन मदोशो मान तवगी हायन तवखिबन अत्ते पापी दुर्जधोंगी मचेंग चारुबन तवखिब थबक इमान हाई बसिगे अनुमान दे हनक लान फमद करनन न खोयगी न फमद करम बलम चत चत की बगे हाई बदो निंग सिंग दुन येंगुने धर्म
3: इमा इमा नंग दी मचा हात पंगम दी नंग दी थमोई दी नुंग नीमा नुंग हनक ओई क्रीबा अचोब लान फम नाक न थोकन बने
2: मराई बक थीरग याम बदी मामा मशक अंगन मकुन शिलों करे देने को मामा मशक ताक पी खिद्रे देने इमा
3: ताक रे इमा कदाई दा
1: गुरु की लान बुंग कारम दा भगवान कृष्ण की थाव जाना नयाम बदो मामा आएगा सखंग नकरे नमाने हिंग चावी ओला दुना न कोई मंगा गे लाइंगम फिरान पाय न बह महाग नलू न थम जरब तेल मंगा थी दोग लुई दान वीरा दुना शु नमाएंग वंदा अदुमक पिथोरे अदुमक पिथोरे
3: खुटलाई मंगा अदुशु नीथोक पीरोड़ भई मा
1: हे पार्था नंग वारोगनु साओगनु नंग बुहान ना बा मेरे तू शोर अदु दी हनबीरम बनी इमाना
3: इमा हनबीरम हनबीरम बको इमा अदुमक तदकाब की दबा अदुगा हायरम बा अर्जुन नंगी थाऊर बते हनसिंह अदुगा तदिकाप ले कोगा भई आंबदा यामगी दोलाई चाका पृथ्वी न पाखरमाने याम मुक्त सत्कीगे
1: मधु दशुनत्ते दो इमान मागी मफमदनी थोकलुबा बांधो की मंगोल की दमक माग की मपांगल लोग थोकलुई ने इमाना इगु इगु से न यामगी खुदों भी इमान कक्तुन लहोरी बसे इगु ने धर्मा इगु
3: ना हाँ इंचावी वन करबरा यामुं यामुं मारती करना इमा ये अकन्न पोपी महारथी कर्णबु न चाओ इन फंगदी मपो कयार की पुइन्न निने इमा अदुबु अपोपी नंगी कर्म की महीन मिनोक चावरव समाज की ममांग द हरोव न तंबाग द पंजब फंकी द्रे देखो इमा अदुगुंब मंगान चावरव अकन मदुशु नंगी थमोएगी काचिन चेतन लोतुन थमकी बना नसी अर्जुन न मया महालु बगे पाप कर लोई न रब निगम द्रव में चाकर से की मरक त पुन्सी ऐसी में चाक तो न ले बताक रे द कोई मा
0: इताओ अधुम न करेगी इन्हें हम तो अंध हाय बगे पुम न मग नोंग दम बगे खुजिन अधुगी शर्क पुदी सच्ची अथाउ बदुगी प्रेत तर पोन कर लुशी मधु न पुन मग की दोष को लगन
2: इमा नुपी की थमोई दी लाई गुमने थोड़ी थोजा लही है नहीं अदुबु अखांग कन बदरी नुंगुम बने
3: 이마 나학이 가직당 쇼이 키바 콩품다 까야다 박 샤오크럽 레이크럽 레이크럽거드다 마차오에베이 코이기 만나자다 빠뿌이나 뿌나마 카이타카이 마친 마나우 깔락탕 하이갓나 카리 마나우나 마야 암바하 또크레 아두나 오비샤아프세 이마 아마디 상사르기 누피오에베 싱이마 팜다 깔라바네 누피 오이비싱기 타모이다 아쳇 빠르원도 와품 맘맛다 탐방암다 보이러시노
4: 하우짓 따비레 라디오 릴라 카르나기 아로이비 야헵 릴라 아스다 삭담 랑키바 싱디 카르나기 삭담다 오이남 비르망골 싱 아르준기 삭담 랑키바 카이뎀 데벤 싱 Krishna's Saktam da Laurembam Santi Kishore, Yudhishthir's Saktam da Kangabam Birvabu, Sailagi's Saktam da Irom Navakanta Singh, Parshuramamadi Brahman Amagi's Saktam da Saugaijam Navakumar, Kunti's Saktam da Guru Mayum Ivyayma Devi, Lila Iba Ningombam Ibubi Singh, Lila Puthokpa Sagolsem Indrakumar Singh, Puthokpa da Tengbangbi Guru Aribam Yaimabi Devi. Akashwani Imphal, Hauzik Matamisaya Mamuk Kudul Tamjiri. Saisakliba Aribam Tombishna Sharma. Sairingba B. Jayantakumar Sharma. Thamoy Nungda Latliba Nungshi Pratima. Chet Natamjabani Kaidong Nungda Mudlaroy.

အကစ်စပနီမ်ဖလ်ဝိုင်ဟင်ဘမ်ဝါရှင်တန်နပေါပါဂျရီအဟန်ဘဒါမရွေဘပေါဆိုရှယ်မီဒီယာကြီးကုထန်ဒတုံငန်တုံငန်ဘကန်လုံချင်းပေါဖောက်တုတ်နဟန်ဒူနာအမဒီဂျန်လောက်ရှင်ပီထုတ်ပီရှင်တုံနဒူနာခုနိုင်ဘအဖဖမိုက်ကေတပုရကနဘာမုခမန်တရီယူနမ်ကမ်ချန်နဟိုင်ရီကေန်ဒိုဂီဂရီဟမန်တရီအမစ်ချာနာအာဆမ်မဆုံအရုဏာချလ်ပရဒက်စ်ကီမုခမန်တရီရှင်ကရိုင်ဂျာစင်ငါဒူဒထုတ်လီဘိုင်ရှင်ငီချာဝမဒီချင်းနင်ခိုင်ဘနချင်းဘထုတ်တုတ်ရှင်ကီမတန်ဒဝါရီရှာနခရေpetrol lam sung diesel yon ba ma di yan thok pa ki matang da temporary regulatory sa na halam ba du tok na ba sarkar na ware plau re amasung med department na awang nong pok lam dam yau na lai ba ka se ki ma pham kaya da nga si akan ba nong chu ga ni hai na orange alert lok thok re Mukhyamantri Yumnam Khemchan Singh na social media ki kuthang da tongan tongan ba kanglup sing pau phaudok na handu na madi gyan lo sing pitok pisin taw na duna masina khunai bu apaba mai kai da porak na bagi shakti yam oih na ba hairi malem gi social media numit ki yai pha pau jel pira duna shri Khemchan na hai ai khoi pumbana social media platform bu dai talai na shijina baga loina na miyam da achum ba khangan na ba madi nungshi sha na ba porak na ba hona rashi platform asibu la na si jena da na bashu Shri Khemchan na hairi Shri Khemchan na malem gi asteroid numit kamari laina na shu miyam da yai phapau jel piri social media da thagat pawarol da Shri Khemchan na hai planetary defense and asteroid impact hazard highway hiram da pangthok liba numit asigi palan thora masina ai khoi gi male masibu asteroid kya ki bakya da gi ngak thok na ba thijin khochin bagi maru wai bado utli tungi ai phana bagi damak bigyan gi gyan lo singa masung innovation hangat hanna bahona resi hai na shu ma ki pau jel da hairi nasi malem gi parliamentaryism numit ka mari laina na hana ki kendra mantri rajkumar ranjan singh na social media da thagat pa warol da numit asi dai khoina ganatantra bu hena ma pangal kan khat hanna bware plau resi hairi malem gi khwai di gi sauba ganatantra chat palebak ama oiba gi damak bharat na sau thok sa ba poi hai na shu mang na makatari security force na raija sida tongan tongan ba ma pham da thi hum ba gi thabak cha ta duna yam la ba khuchu khulai ma di drug phagale manipur police control room nangarang thoki ba chero la ma da hai bishnupur jila gi phubala paton area da gi security force na rpg launcher ama hand grenade ani lethot bomb ani rpg grenade ani artillery shell ama tip launcher ahum magazine galoina ba 0.32 pistol ama tongan tongan ba caliber gi maru tara manga detonator ama 0.303 lmg magazine ama slr ama phagat ki jiribam jila gi champanagar forest area dagi manipur police na tongan tongan ba caliber singi ka payari ba maru satruk kun manga slr taruk AK ama amasung magazine manga su funky senapati jila gi ti khulen nakasek pointa security force na brown sugar oigani singna ba palam gram samarom su phare amaromda manipur gi DGP mukesh singh na law and order gi ADGP ga police headquarters ta officers singa masung special commando unit singi commander singa raija sigi haujik oiba suraksha gi matang da kup na khana khre DGP nangarang Kakching jila da leiba Nepal suba IRB gi headquarters samsung Sandel jila da chatuna haujik oiba phibam yangshin ki armed force singna lamdam asomda shanti emadi tangdu leita ba phibam lakhanna ba honna ba galoina na NSCN ke Niki Shumi gi lalowa ani hauki ba thang janumita Arunachal Pradesh ki kheti da Assam Rifles samsung tira police ta changa rakhre makhoina maru yau ba pistol ani suloina rakhi lana lamjing bikhraba na harol singda hingsa thaduktuna shanti chaukhat pa masung leibak achi chengbat pa gi maike de changlakna ba shu security force na apil tauri raijya sarkar gi lau musungu bibhag na organic farming gi lau patha mai pak na paikhat na ba khonari ba thorang gi makha da laumi singda bio fertilizer phangan na ba masung sije nahan na ba khonari khongthang asi ga mari leina na raijya gi lau musungu bibhag ki director peter salam na hai khet bachao abhiyan gi makha da bibhag asina green biotech eco solution limited ka khucham na duna bio fertilizer sing laumi singna matau karam na sije nagani haibagi matang da takpi tambiba farmer field level demonstration sing shilli
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंह राज्य सिंगदुदा थोकलीबा इसिंग इचावा मदि सिंग निखाइबा ने सिंग बतोकदोक सिंग मतांगदा वारी सानखरे फिबम दुलाक्सिनब केंद्र सरकार की मैके दगी पीबे याब टेंबांग पीगनी हाइबगी थाजबशु महाग्न पीखी असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सेरोल मदहाई राज्य दुगी जिला तरेता इचाव की अवाब मायोक नरी इचाव सिना खुल चनी यांखै तरेत की मियोय लिसिंग निफु मंगा सनिपाल कुंत्रा मापलोम सोखली अथॉरिटी सिना रिलीफ कैंप तरा निथोय हांगदोकले इचाव सिना राज्य दुगी धेमाजी जिला दना ख्वाइदगी हेन सोखली अरुणाचल प्रदेश तसु इचाव की फिबम लुसी लकली राज्य दुगी जिला तरा निथोई नोंग कन्न सूबदगी लंबी थोंग अमदी युम कया अमांगता थोकले मफम खरदा सिंग निखाइबगी थोकदोक थोकले राज्य दुगी इचावदा यामद्रबद मियोय अहुम सीख्रे अनी नथिब खंगद्री ताबिरिब पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी पेट्रोल डीजल योनबा यंथोकपदा मतम खरेगी रेगुलेटरी थौरांग चनहलंबदु लेपनब सरकार नो वारेप लौरे पेट्रोलियम नेचुरल गैस मंत्रालय ने हाय मतम खरेगी ओइना पब्लिक सेक्टर ओइल मार्केटिंग कंपनी सिंगी रिटेल आउटलेट सिंगदा मोटर स्पिरिट हाई स्पीड डीजल द थमलंबा टेम्पररी रेगुलेटरी अदु हायेंगदगी चनररोय मंत्रालय ने हाय नोंशुप एशिया की वाथों की यंगलगा रिटेल आउटलेट सिंगमदी दरकार लेबा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल अमसुंग कमर्शियल कंज्यूमर सिंगदा कस्टमर अमामदा नत्रग गारी अमामदा नोंगमदा हाई स्पीड डीजल लीटर चनी दिगी हेना पीदनबा टेम्पररी रेगुलेटरी अमा था असिगी तरा निथोय द थोकिबनी अदुबु लैबाक असिगी पेट्रोलियम की पोथोक सिंगी फिबम कुपने यंगसिलब तुंगदा मियाम की यंगदुना मतम खरेगी ओइबा रेगुलेटरी अदु चना हंदनबा सरकार न वारेप लौखिबनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नुमित निनिगी आंध्र प्रदेश खोंचट ngasidege हौरगनी मा की खोंचट मनुंगदा राष्ट्रपति ना सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश अमसुंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की कन्वोकेशन थोरम सिंगदे याउगनी मेट डिपार्टमेंट ना अवांग नोंपोक भारत नोंचुप बंगला की हिमालय की सरुक बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम अमसुंग माहे की मफम कयादा ngasi अकन बमोंग द नोंचुगनी हाइना ओरेंज अलर्ट लौथोख्रे हायेंग फाउबदा उड़ीसा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश बिदर्भा छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु अमसुंग कराईकलदा अकन बनोंचुरब याय हाइनासु मेट डिपार्टमेंट हाइरी लैबाक असिगी फिल्म उद्योग पुहेन चाखल हन्नबगी पांडमदा केंद्रगी इंफॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय मरुवैब वाफम अनी लौथोख्रे इंफॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभापति ओइदुनंगरंग न्यू दिल्ली द पांथोखिबा अवांग बथाकी मिफम अमदा वारेप सिंगदु लौखिबनी मिफम अदुदा फिल्म पुथोक हेनगत हन्नबा फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की नेटवर्क हेन पाथोक चाथोक हन्नबा होंगलक्लिब टेक्नोलॉजी सिंबु भारत की सिनेमा की इको सिस्टम याहुन्नबगी मतांगद कुपन खनखी मंत्रालय ना मखातान हाय भारत की सिनेमाबु मालिंग ब्यातै लेबाक सिंगा चांगदमनब ngamnab अमसुंग सिनेमा की इंफ्रास्ट्रक्चर मरुवैना खुंगंगी लमसिंग अमसुंग अपिक पसोर सिंगदा लम मसिदा सेल थादब हेनगत हन्नबगी पांडमदा खोंथांग अदु पाइखतपनी लोन ड्रग कारबार तौब सिंगी मथक चथब अचौब खोंथांग अमा ओइना नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना पूर्व राधा किशोरपुर नाका चेक पॉइंट तगी गारी अमद पोरकप याबा टेबलेट लाख अमा मखाई फारे मसी पुन्न लुपा कोटी तरेट मखाई रोंगी ओइगनी हाइरी गुली सिंग अदुग कोनाना असम की सिलचर दगी मियोय अमसु एन डी पी एस एक की मखादा फारे अरुइबदा मरुइब पाव अमुखना सोशल मीडिया की खुतांग तोंगान तोंगानब कांगलुप सिंग पाउ फौदोक नहनदुना अमदी ज्ञान लौसिंग पिथोक पिसिन तौनदुना खुनाइबु अफब माइकेइद पोरकनब मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान हाइरी केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह असम अमसुंग अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सिंह राज्य सिंह अदुद थोकलीब इसिंग इचाव अमदी सिंग निखाइब नचिंब थौदोक सिंग की मतांगद वारी सानखरे पेट्रोल अमसुंग डीजल योनब अमदी यंथोकप की मतांगद टेम्पररी रेगुलेटरी चनहलंबदु तोकनब सरकार नो वारेप लौरे अमसुंग मेट डिपार्टमेंट ना अवांग नोंपोक लमदम याउना लैबाक असिगी मफम कयादंगसी अकनब नोंशुगनी हाइना ओरेंज अलर्ट लौथोख्रे पाउलो जरे

0: हेलो हेलो
1: हेलो गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून कनाओई बीरो बनो ताबी रबो
1: ताजी ताजी मैम।
0: ओ हाय बियो हाय बियो होय होय कोई रे अदो मिंग लाइफ ओम तंग हाय बियो
1: उन्नदी दबे की मति कोई रे निसी जरबा मेंगी खोंजेन सेंगा सिगी ताबा फंगेरे ना इलाइन जे लौते रे इनी मैम।
0: होय होय अदो मिंग लाइफ ओम तंग हाय बियो
1: आई क्राई देगी रोमा बति थोलाम जों ने
0: होय होय तराम नोक चरी रोमा बति करी वाफम पुखत पी गनिंग असिगी थोरम सिदा
1: मियम बुलाम ना नोंग चरी मियम आई वाफम अम तो पुखत सनिंग बा
0: होय होय
1: हाइपान उपालम दम मारिचुम ना पालीबा कैन उहई जे उहई आम ना पान बा उपान दी मराई लुई हाइने बा मिदाम
0: अदो होय होय
1: माइखो गी मारक सिदा आमा खक्तंग तिन जाबा याउर अगदी हजार बनि पीरबा पालीबा उहई जिंग दो उहई जुगी मगुन दो रोय ने सेंग जाबी गियाबा द इशेंग शेंग ना हाइजनिंग बदि अखैंग सिगी खुनाई सिदा नि पीओ बिजिंग ना नि सिजेरबा मासा दगी माथाबु काइना बंगा मपा दगी मापुरो बे बुमा पुरो बे निखंदना आजगी आहेनबा वाखन जे खल आगा गोपो वाखन खल लगा मायन थादो ओगा दत ने नतलिबा वाखलोन जे निपीओ बे खुनाई दा याम दम ना हिंगे बपुन सी अमदजी मोय बु मका या कया सिना अमु बकाली तैसन बिरे संजन बिरे हाइबा
0: होय होय
1: दा मोय असुगुम बकया कया जे वाखल दके माति ता दबनी आजुगा समाजि दगी लाम ना मरु फुकना ตุกขะกะดีสุมะกะยาเทมะตุงดะมุทวยดะรันสุงคันจะบะอือฮึจัมจัมนะหิงเยริบะพุชิยามะกิมะพัมดะดีมอยกุมบะกะยาเกยาจินะเตนทะบีจินะอะมุบะกะลิเจซังเจนบีเยบะอือฮึอะดุโกพะจะคะบะนิปิโยจิขัตตะนะสะมาสะมะเสียนนิคุนายะมะเสียนนิดะไลกายะมะซะอะพะบะนิปิไลยะกะดีสะมาสะมะคุนายะมะเสียนกะตะจะอะสุติมะติอะมะตุโอยนะพะจะบะไลเตงไฮบะโจโอยบะนิอะดุโกมะรึกชิงจะดะ ฮัตตะบะคุยวะคันพาดะบังอัมดะบะนีโบนียามะกีวะคันดะนีโยยบะกีวะคันคัลตะบะไฮดะเจอะสิกิมะติกตัมทีบะอะมะนีไฮนะคันเจนียามะวะอินยานิรัตติลละกะดีนีโยยบะกีวะคันเจคันดีบะบะจาบูมะทาดะกีไกนะบังอัมมะปะไฮวะเจอะสิกิมะติมะคุยเจวะคันยาวดะบะนีโยยนีไฮเจนิงิมะดามไอตัมซางะดีลอเจอร์โรย
0: ฮัยซัมบูอุนนะซะนิงมันตะกี
1: คอนเจนเตซะกาซะบะซะติเมติอุงชีเซบะเดไอไลน์เจลอเจรคนนี้เฮ้ยเมดามไอทัมเจรเกเปียนเซนเจรเกมายังกิคอลเลอร์ยังเจรกะเมดามเฮ้ยๆทากะเจรียามนะพะซะบัวฟัมซิงรามาบะติเกไมเคยเดกิซุปุคัตปิรัมบะเซอะนะไอคุยนุปิโยยบิคุดิงมักเซคงทางคุดิงเซไฮนะซิงนาทางซีไฮบัวฟัมซิกะลอยนะนะรามาบะติบะมุกะฮะนะทากะตะฟงดอกเจริ
0: हेलो
2: हेलो
0: कनाओ बीरो बनो
2: तुम की बोल रही विद्या रानी ने
0: विद्या रानी लम दो कई हैवी बा
2: मुतुम पिबो
0: मुतुम पिबो ओ करी वाफम पुखत पी गनी गसे थोरम सिदा
2: दिदा सुन आई जे के सुतु दि हानी आ देते फोटो पा
0: हम्म
2: आ कला कोई की ने एसएमएस अब द कोई से लखलो तो बजे
0: हम्म SMS ki oina di khudak khudak ta tharapadu lokhachagadabani adubu akoin akakna matam thambani na matam koi gi tielawa matam duda marup khuding makna thabi ragli ba SMS sing do loina mak lokhat padingam jadabani na khara makhai lokhachabani aduna tari tari ban mi mi tuda adumak tharap sing du oina di lokhat kadabani
2: ওই
0: খান দে ওই সুকাই দে হয় ও আফম সিম কাকতরা থা বিদ্যালয় নিন থাম বিগা দবসে এত
2: সিদেnga সিনা হামনি
0: বকো কত রে ও ও
2: না
0: কোনা বক কেন তা জরে হয় হয় হয় আনো বমা রূপম সুফং জরে নুমাই বসু ফং দক জরি মথং দসো দম ফোন দো বিরো ওয়ারি ওয়াতাই সানা বগি তঞ্জা পুনা লমি নসি দেই
2: গতি
0: দি কেন মথং দদি পাখল রই ক আ থাকে চেরি থাকে চেরি

0: हेलो ताजर है, गुड आफ्टरनून कनाओ बीरो बनो मेमा करी वाफम पुखट पी गनी मेमा की मैके देगी दी
1: ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯉꯥꯛꯅꯗꯤ ꯆꯠꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯃꯛ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯏꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯖꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯁꯨ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
2: ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯪꯉꯒ ꯏꯁꯩ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯀꯣ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯐꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯖꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯕꯅꯤꯅ
1: ꯃꯤ ꯃꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯐꯪꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯁꯦ
2: ꯐꯥꯗꯣꯔꯕꯅꯤ
1: ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯗꯣꯔꯦꯕ ꯐꯪꯗꯕꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯗꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯅ ꯄꯥꯏꯗꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯥꯏꯌꯁꯅꯦꯁ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯃꯦꯝꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯖꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯔꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ

धन्यवाद मेरीना। यह आकाशवाणी इम्फाल का शंघाई चैनल है 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। मैं वाइकोम सिंह गानबा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म हम्ती शर्मा की दुल्हनिया से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में इस गीत के साथ। गीतकार है कुमार एवं अनीस अहमद और संगीत शरीफ तोशी एवं जवाड़ अहमद का।

अभी आपने सुना फिल्म एजेंट विनोद से हमसिका, अरिजीत सिंह और जॉय का गाया गीत। गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत प्रीतम का। साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के सांगाई चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गीतमाला। अब सुनते हैं फिल्म तमाशा से मोहित चौहान का गाया गीत। गीतकार है इरशाद कामिल और संगीत ए आर रहमान का।

अब सुनते हैं फिल्म दिल बेचारा से अरिजीत सिंह और ससा तिरुपति का गाया गीत, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत ए आर रहमान का।

चिंगड़ी बुंगोई दुनिंग तो आई सिंग सिंग छित्र बदी सरा हिल बतार बर खलु बद खनु ना मालियम लाई माय द मरु लुक थरे रे ग खनु ना वा खन तउ आई ने इकाय द न सुन ले रे दी का न दी आई से सिंगाई बिगि नाक त चंग ये रगा आई नंग सी पुरगली ब सिंग ममल सुख थुई हाई रे रोई

0: 아이랭아, 토이비 깔 틸부클 칵나루니 밈맘 파니 라이닝토 나나이 라이닝토이 학부야 탕부 꼬로우 탁다수 까파디 말리엠레이다수 따파디 나나이 노비스 서로 기가 하렘가 아영레이모 반도 호이비나 아무도
1: खमनुना ओन कैथल द सिंग योन बगी मतांग दा माइबम श्यामा देवी ने सकप खोंगजोम परबा थौरम गी अहान बोइना इचेने नाउ तामिना रे चेबेमा थौरम गी अरोइबा मपुंग ओइबा सिदी ननाउ नंग असाई अहो बद पंजखिबा याइफ युम्बाल द युम्फम ओइबा लीला मचा लाइक शेयर एंड फॉलो हाइबे सेमो तामिनासी
2: होय तासी
1: लीला सिबु इबिरकपना इमो आरके नी पुथोकपना थोकजोम रेनुबलानी अदुगा पुथोकपद तेंगबांग बिखिबिना मेरिना मोयरांग थेमनी
2: होय
3: हौजिक ताबीर याइफ युम्बाल की लीला मचा लाइक शेयर एंड फॉलो लीला इबा इमो आर के लीला पुथोकपा थोकजोम रेनुबला पुथोकपद तेंबांगबा मैरीना मोरांग थेम ताबीर याइफ युम्बाल की लीला मचा लाइक शेयर एंड

0: 嗨，本头，你困的呢？
1: 哼，
0: 买个赌博，来托皮拉特里布赌博，可以给侬来本头。
1: 乌比德博，米托，埃斯托，米斯纳赌博。
0: 嗨，输了是的，拼个来呢？
1: 啥呢？龙家把啥他个？苏芒是的，你们固定的 paper 把那个盘面还是？坑呢坑呢，行个不挖行多，困宁的吧？咱给王刚、陈刚投过了多。哎呀，买那点吧，打宁的吧？
0: 哎西，其他 style 都不给王刚是不？投过了，伢们开不给忙呢呢。
1: 你好久看给 social media 拍不给海那边 ？Hello， 妹呀，开不给海那边呢呢？那我那打的妈咪去啊？拉西的，蒙得嘞好了噶？
0: 哎西，哎西不伢们不得不给忙呢呢，朋友。
1: पग तबना तेदा इसा दी राशी का समना बा खरा वाट पे वानी
0: इमाल पे मा अदु दी अमुक सु हाई स्टार ने पंधो
1: ओ तो हिने रोई दुरी दे आईडी कना लौनी नो खंग दे ने मसी ngang से सुमाइन का तोरम दमी
0: करिय मुगे और के पेपर दु द पंधो न थंद मुरु मुरु सोली दु ना
1: ए नंगु बा पग तबई वाडी द सोली बा ए सोंजरी बा
0: ओ तो दो बो पाकु मुगे त ने पंधो नो पीबी रही से मटम सिगे होम रखर का फॉलो तो बियो ठोक लोन दने याम ने संगसिम बिरु नु कै दोगे पडो
1: मतम गे अहोंग बदा फोलो तोबा
0: होय होय होय
1: शेयर छु तोक जके कमेंट का छु पिजे रके
0: अदु दि बेस नि ने पडो
1: हे सथो सो साइदा याम थुना नंग इनाक तै लाथो ओर चोर नोय गे फोलो कमेंट शेयर गे वारी दो हु मु खारे आइ
0: पाउ छि पार ग काना बम तो पादर ब गेम तोरे दा
1: पाउ छि पाव छि छु नंग ताके है ब्रो
0: हा ताक्सर होय ताक्सर होय ताक्सर होय ठोक लोन का एना मु हायर कनी आइ नाइ जे बदि ओ बेरा लाखा दबा अमुक त लुपी यानी होंगल होंग रे मरी मंगाल होंग रे गायब गुंबा अरे की जापान न नुपा वाले है गुंबा अदु गुंब की कलम का दु थी थी सुम पाले रे रसी नी दा
1: अदु देखि दे नंग नंग नोंगान ब चक चक लाव रे बो पाउ से से थुप च लग से गायर ग मतुम तार गने नम्मा इरु तार कनी नंग
0: ओ दो दो लोन जी ने बिरे पंतौना थो मक्कनी आएगा तो तार कनी आएगी
1: अरे चक चक जम लाउन को थरोए फागी फागी दे ए छौरकनी हरि छिने न
0: अछु म पुछ सके सके लाउ नि खम्बी कि बदै नि मालेम छिन सादो कांद इन नि बा इन दो कांद न सारी जे पंथो
1: कया दे हाय ओया ओया थरो ए ओया न हायर ग ए नि हेते इन दो न ते ने
0: इन लोई खंग बकि नि हायर छे अछु म बबु हाय बि इन र दि पंथो मालेम से पीस ओइ रोइ द्रो पीस ओइ रोइ द्रो
1: हाय पा दि पजे न सार मे ने जा दे हा सोशल मीडिया गी ओया ओइ बतौ ना हाय पाजियल 650 का तुमिन तुमिन चार बके नो
0: जा जा की लोन है तो नहीं गांग जब बंदों ने आई पासिल 650 का है जी ने
1: पागी पागी तो कि नंग आई की असाव भी लिमिट योर तो रेको अपाय पूर्ण हमने सो ये ना थोमा नहीं नंग
0: बंदों ने पाय रिदो पेपर नहीं पेपर ने थोमा को वो कई हम नाने के तारा मुगने लो लगा ने थोमा के जो थोम बीरो के शुकाई दे अदुंगा को बंदों नूंग दे दी यो मगे थोम बीरो कनु को
1: तो नूंग आ रही थोड़ी था नूंग है गान मगे चिंतक चिता हंगत अंगन अखुम बदा आई फरसु फत्रसु ऐजि नपा नि नै नपा इंग्लिश त हारगा फादर
0: हिंदी ददि हिंदी ददि हायरम द्रे
1: कय आदर होस
0: याम द्राय ओइ द्रा खोय पंथौ गिजे इंग्लिश त हायरक्टर सुनि ऐ नेन खंजै दा ऐ गि अमत तंगाय ब इपा नि हायबा
1: मपा गा से अनि छु नि गे खंग देने अमत तंगाय रे ब काय न मतांग सादर ग तब से लेजे
0: पंथौ न फरसु फत्रसु हायर पदो अदो छौनिंग बा फरसु हायबो हायदो लोथोपियो
1: ऐ सिबु याम फता बै मोंग नि ने को हा याम फता बै मोंग ने बा
0: याम भरगे मि
1: ऐ नंग मुथालिबान फिनारोन थोलिबा मोबाइल फोन लेबिरिबा पाखंग फानदना लैसाबि मसक फजा फजाबा फेसबुक ता इंस्टा दा येंग दंग येंगु कमेंट पिरु नो न ता पिरिबा ऐ सिबु ऐ ऐ सिबु कयाम या पत्र गेबा
0: अदु दिने म पामन मसाम गी तोफम दोक पने अहेन म कैछु याउगे मी इजुने लोइन तौने नतने तौबु तौद्रो
1: नाय खोंग नाय खोंग
0: तौबु तौद्रा बा
1: मी ने तौने दब कै नो नंग नाय गोन तोहनिंग से हा मीने तौने दब कई दोबा नंग नाइगोने तोहनिंग
0: से पंथौने ने हंदा मपोकि दिने तौबंग अमरोय एगि निंग बकाइबा एगि नुवाइ तबसे कोखन बसुंगा मामरोय
1: ओ एइन नंगि निंग मसि याम थुगायराबा एइ याम पत्रि सिनिने थरोय नंग ना पाइ गोने
0: इरा तो तो आ आदाय दले रे पंथौगे सोइबा
1: ए
0: पंथौगे मरान
1: क क क करिए करिए सोइबा
0: पंथौगे मरान आदाय दले रे बा
1: नंग ना आइगोने सिनिंगे बे इरा जिकै हा नंग ना आइगोने सिनिंगे बे इरा जिकै नो
0: पाउ
1: तांगनी ने नंगी से हा ꯄꯥꯎꯇꯥꯛꯅꯦꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯁꯨ ꯂꯧꯔꯣꯏꯗꯧꯗ
0: ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯧꯅꯤ ꯈꯪꯉꯝꯃꯗꯤ ꯁꯨꯡꯉꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯧꯔꯤꯒꯦ ꯁꯤꯡꯕ ꯋꯥꯠꯄꯁꯤꯡꯅ
1: ꯁꯤꯡꯕ ꯋꯥꯠꯄ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯁꯤꯠꯇ ꯅꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯊꯧꯒꯂꯣꯟ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯅꯍꯥꯒꯩꯁꯦ ꯑꯄꯪ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯃꯤꯅ ꯅꯪꯒꯤꯗꯣ ꯍꯥ ꯑꯩ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯪ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯪꯒ ꯀꯨꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯜꯂꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯉꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯏꯔꯥꯟꯗꯨꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯅꯪ ꯆꯪꯒꯤꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩ ꯂꯩꯍꯧꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯤꯀꯥꯟꯗꯤ ꯅꯌꯥ ꯈꯤꯒꯅꯨꯅꯦ
0: ꯅꯪ ꯆꯪꯒꯤꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩ ꯂꯩꯍꯧꯔꯨꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯄꯟꯊꯧ ꯑꯩ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏꯌꯨꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯜꯂꯤꯅꯦ ꯑꯥꯎꯗꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯒꯅꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯜꯂꯦ
1: ꯑꯣ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯐꯨꯜ ꯑꯞꯗꯦꯠꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣꯝꯒꯤꯁꯦ
0: ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠꯅꯦ ꯑꯥꯎꯗꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯕꯨ ꯊꯔꯣꯏꯅ ꯊꯣꯜꯂꯝꯃꯤꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯔꯣꯏꯅ ꯊꯣꯟꯅꯒꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯊꯣꯟꯒꯦ ꯑꯁꯤ ꯊꯪꯅꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯊꯣꯟꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯊꯣꯟꯒꯤꯕꯤ ꯊꯔꯣꯏꯗꯨꯗꯤꯅꯦ ꯆꯦ ꯆꯦ ꯊꯨꯞꯅꯅꯕ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣ
1: ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯪꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯔꯥꯟ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ
0: ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯕꯨ ꯁꯣꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕ ꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯐꯕꯅꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏ
1: ꯁꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ
0: ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯒꯦꯕ
1: ꯊꯔꯣꯏꯕꯨ ꯀꯅꯥ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯊꯝꯕꯧ ꯏꯆꯟꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯊꯝꯕꯥꯟ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯊꯝꯆꯦꯠ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯅꯗꯧꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯊꯥꯅ ꯎꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯗꯤ ꯈꯪꯗꯅ
0: ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯅꯣꯏꯁꯤꯕꯣ ꯍꯦ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯄꯨ ꯏꯄꯨꯡꯉꯣ ꯅꯪꯁꯦ ꯊꯝꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯟꯗꯤ ꯀꯟꯃꯜꯂꯤꯀꯣ
1: ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯩ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯄꯨ ꯊꯝꯃꯣꯏ ꯀꯜꯂꯤ ꯀꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯨꯀꯣ
0: ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯨꯛ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯛꯐꯝꯁꯤꯕꯨ ꯑꯉꯥꯎ ꯑꯐꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯏꯔꯩ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ
1: ꯀꯌꯥ
0: ꯏꯔꯩ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ
1: ꯀꯌꯥ ꯑꯉꯥꯎ ꯑꯐꯩ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯅꯗꯧ ꯑꯣꯏꯅꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒ ꯅꯪ ꯉꯥꯛꯄꯤꯔꯣꯏꯅꯦ ꯂꯤꯔꯔꯣꯏ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯅꯝꯗꯅ ꯂꯤꯍꯟꯗꯧꯔꯤꯅꯦ ꯅꯪꯅ
0: ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯃꯥꯡ ꯁꯝꯅꯗꯕ ꯁꯣꯅꯣ ꯐꯣꯅꯣꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯅꯤ
1: ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯀꯣꯛꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕꯝꯇ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯝꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯆꯥꯟꯅꯔꯦ ꯈꯟꯅ ꯊꯣꯟꯖꯈꯤꯕꯅꯤ
0: ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯝꯃꯅꯤ
1: ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯤꯉꯩꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩꯅ ꯊꯔꯣꯏ ꯊꯣꯡꯕ ꯆꯥꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯊꯔꯣꯏꯁꯤ ꯀꯣꯏꯊꯤ ꯊꯤꯔꯒ ꯀꯧꯇꯥꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯀꯩꯊꯦꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯌꯨꯝ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗ ꯅꯃꯥ ꯅꯪ ꯄꯣꯝꯃꯦ ꯁꯨꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯅꯅꯦ ꯊꯝꯕꯥꯅ ꯅꯪ ꯄꯝꯃꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯄꯣꯛꯑꯦ ꯅꯨꯄꯥ ꯄꯣꯛꯑꯦꯅ ꯍꯔꯥꯎꯗꯨꯅ ꯇꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯀꯣꯏꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯆꯪꯁꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯅꯪꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯆꯦꯈꯥꯎꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯊꯔꯣꯏꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯈꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯊꯔꯣꯏ ꯊꯣꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯊꯔꯣꯏ ꯊꯣꯡꯕꯅꯤ ꯊꯔꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯊꯔꯣꯏꯅ ꯊꯣꯟꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯤ
0: ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣꯁꯤꯕꯣ ꯑꯁꯨꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯕꯣ ꯏꯁ ꯐꯥꯒꯤꯗꯧꯅ
0: ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯎ ꯑꯐꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ
1: ꯀꯌꯥꯗ
0: ꯑꯩ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯊꯔꯣꯏ ꯂꯩꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯜꯂꯤꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯄꯟꯗꯧꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ
1: ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ
0: ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯡ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯗꯣꯏꯔꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯗꯣꯏꯔꯕ
1: ꯀꯧꯔꯣꯏ ꯍꯩ ꯃꯩꯗꯥꯒꯤ ꯁꯦꯞ ꯍꯥꯏꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯩꯗꯥꯗꯣ ꯔꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯔꯞ ꯇꯥꯔꯒ ꯊꯔꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯆꯨꯁꯤ ꯃꯥꯟꯃꯟꯈꯤꯗꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯛꯁꯤꯗ ꯈꯟꯈꯤꯗꯕꯅꯤ
0: ꯑꯩꯒꯤ
1: ꯃꯤꯠꯇꯗꯤ ꯅꯪꯁꯦ ꯊꯔꯣꯏꯗ ꯊꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯖꯔꯤꯝꯅꯤꯅ ꯍꯩ ꯁꯛꯀ ꯃꯤꯡꯒ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯆꯥꯅꯅ ꯊꯣꯜꯂꯦꯗ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯔꯥꯎꯖꯔꯤꯝꯅꯤꯅꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯡꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯂꯩꯔꯥꯝ ꯑꯁꯨ ꯊꯣꯜꯂꯣꯏ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯥꯡꯉꯤ ꯅꯪꯗꯤ ꯃꯇꯨꯝ ꯇꯥꯏ
0: ꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕ ꯍꯩꯕꯗ ꯕꯦꯁ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯐꯥꯗꯔꯅ
1: ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯅꯍꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯇꯧꯅꯨꯅꯦ ꯈꯪꯗꯤ ꯈꯪꯗ ꯑꯈꯪ ꯁꯥꯕꯗꯨ ꯐꯠꯇꯦꯅ ꯍꯩ
0: ꯄꯟꯊꯧꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯒꯤꯔꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯊꯔꯣꯏꯅ ꯊꯣꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯕꯣ
1: ꯃꯥꯅꯤ ꯈꯪꯕꯒꯤꯅꯤ ꯍꯩꯕꯒꯤ
0: ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯈꯪꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯍꯩꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯅꯅꯦ ꯄꯣꯔꯣꯛ ꯄꯣꯔꯣꯛ ꯆꯥꯈꯩ ꯍꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯕꯨ ꯃꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛ ꯂꯥꯏꯅ ꯊꯣꯟꯕ ꯊꯔꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯊꯔꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯀꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯍꯤꯡꯅꯤꯡꯗꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ
1: ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯋꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯍꯧꯅꯗꯦꯅꯦ ꯍꯦ ꯊꯔꯣꯏ
0: ꯀꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯣ ꯃꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯄꯦꯟꯖꯔꯦ
1: ꯀꯧꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯀꯧꯅꯤ ꯊꯔꯣꯏ
0: tawurisong dam dry with
1: the hey, Madame Hagi Munetau. Me a man a quiet keep Pamjaba, Ninjaba say, Paglang, the telegatumney. I do ID Tamu with any hand of Tumba Pama missing. Pamjaba Pochak, Pamjaba Ming, high bars horn by him say, me boom couldn't run a pumney. I do I in a taroi tomb by am the Pamjaba. Taroi, the yam and out of a gay, Nangi Ming say, I ain't a taroi hydra, yam unique way to tone give a ming.
0: Yam unique way to tone, yam unique way in it. Malasune, taroi malasune, me no matamur melodramina, pazare egipunsize, agitare.
1: Ah,
0: taroi, guys, a twin, taroi, no.

0: ayri bo taroi nang di yam chaura me ning je mi na tor kani khan badne ai ne choi choi lor ge hing ni je
1: hai mai mai
0: ai na ngachi bau da lai sha bi am ta da I love you hai rakti ji jo ne ning je hai ni khan badne me
1: ai I love you ai du di hai da bana phai ne
0: kai kai je
1: na shak tu da kanam ta na su yar oi
0: ni drai oi dre
1: ha ai pan adu khang da na ngon da ngasi bau da nupi thiro na hai de chini ne ai na sak thong da kar wazir ab su no mu ta wai hai de se adugi ni ne
0: adu jo ai ju mi ne ai ju mi
1: ai ma hai ma ipa su khangi da nang mi ni hai ba nang su ondo pai du ni na rai bak thi bai du a na sak tu ti gra ban na ma ma la ge hek poi do ai lo na ma ju khara pha do ba
0: pan thong na yam pha sa bai mong ni ne ai ju hai ro ro
1: hai u ne
0: ma mi ji mai da di se bai ba mu su lei
1: ye lei lei lei
0: thi ba ngou ba ma la na
1: thi
0: ba ngou ba layoi grabi imada den taina bdi yaro yaro esine
1: se mama kasi so po yadri ne tawri se ai ai se nang nami tu the ba angau ba mal su angau ba hai se phaja ba chingim nin he pam ja de amu ba ja se ita pam ja de amu ba ja si se se nang tara mani tara mani ne
0: ta jare huji se pan thori sei dune tro tai
1: पामजे दे आंगौ बजा छे ईता पामजे दे आंगौ बजा छे श्री तारम हिरो ने हा तारम हिरो ए बा
0: कन्या जे मा
1: हे आंगौ बई खुई छे मी ने पाम दे अमु बनोई छे मी ने पाम दे ते हाई बी वानी थरोई नंग ब न सक्तु न थरोई मान न थरोई कौ गर छु कुछु दु न गौरम मब दी थरोई आंगौ ब ओरम मब दी नंग छु फजब चिंग दों ने बा
0: ngau ba sine ya ne ta phajare sine ba ban thau nai je
1: mani
0: ngau ro ngau ba phajagra ba nupi do adu da ne muchin mu ba aigi ma chu se ma chiera ma ba ba as mai chamru si ke ya phajagra no thagna roi dro
1: eh
0: adu ma ge ngau ro ngau ba ban thau wi ki ku chu do adu na khoi da ma chiera ba di ma ya ana ba pa le pro si taw ne hai na roi dro
1: ah
0: sa mu ba ngau ba a ngau ba ne phajai kai na ga ngau ba da kana na ra si le hai je
1: she she
0: ngau ba si ya ma ra si le ga hai na bro amu ba de ne ra si le je adu na ne khoi ya re penja re phajab ga am to pamjad re min ji dang kitang min ka ba phajab am ko bi ra ma di phado ne ba no ma so ta jao ba kari in jang chai na hang ba ai ni cham cham na ta jao ba थरोई तो मचाए ना कुमुद माना नारुम जे थरकी नत्रो नुमितु न पंदौ न थरोई तोंगी नत्रो
1: थोगी
0: नुमितु दे गेन पुंसी की थरोई तो मचारो एन वशक की नत्रो नुमितु दे पंदौ न ताचा ओबग पहोम ने दने याने की नत्रो
1: साओबन ने मधु सु साओबन मिसअंडरस्टैंडिंग नी छोय गरे लान खेन हाइबगी ना पी गिबनी ऐ खुई दी ना पी हाइब फुरुप नी ने
0: मादिङा पि हाइब फुरुप नत ब्रो मादिङा पि हाइब फुरुप नत ब्रो बा मखुतु याउद्रजु मचिन न छौबदि कै कै केमी
1: यार यार यार
0: कल्लु कल्लु गई उदिक्सु नारुम जे चम सारी
1: ए छौनो छौनो इचासि दि हौगले दि हौगले दना
0: हौलो
1: कैसु कल्लु नो छौरो नो से नंग न कप से इपा यिंग ब गम दिन हे फिबम यम काई मी मान दिन ने
0: तिना ले जे म
1: फदी सिन दैथो से से से फदी सिन दैथो
0: यार रे
1: छौनो छौनो इशान सानिंग ब कैनो इशान पाम ब कैनो हायो इपा ले गयो
0: चांस पंगे जा आयो गे अदुदी पंदो एप्पल एप्पल हम द लेबी पंदो
1: के एप्पल
0: होय
1: ये करी के अब द लेई दुई बा केजी मखाई में लेई रो हेरा इचान अदुगे हम चानिंग अब करी की केजी मखाई केजी में लेई ठोक सुनाई
0: दे राय होय बिजी तोरे मी
1: केजी दे लुपा चनी यां खै दे दाल दी अदु सु हाउ तमनी तांग अब सु तांग ने इचान अब चानिंग अब दी छाव बबु फनी आ दी लेई ठोक सुनाई दे ना लेई ठोके
0: करी नो अदुगे एप्पल दु नती ए आईफोन आईफोन हाय बनी अदु सुने 16 मॉडल ने 1 टीबी ओय गदा बा अदु प्रो न त दि पाम देसिने
1: एप्पल फोन ओय रे नंग हाय छ
0: मानी कै नो एप्पल फोन कै नो
1: अदु दे इंग मोय
0: ए
1: यार छौरो
0: छौरो गाइन
1: लाग हेन ब फोन दु बु नंग इ फिबम दु ना हाय नि गाइन हाय दु सु अंगक पनि ने आइ कि था तरु कि पेंशन कि तोलो त हेली ने हाय हाय गमोय गमोय मदु गमोय को
0: मदु
1: त होप तो नो यार छौरो यार छौरो
0: स्क्या पुत्री नि
1: छौरो
0: मचिन ने जिके आठी नो
1: ऐना
0: अपा म लेबी ने आयम मगा नमोय गायना ऐने सरोक तने युंग यारे रिव लोयन कोखा थुगानी यो
1: नंगी डिमांड काय बलोर बे युमुंग छिदा करी यमुक थुगाकी हाय नो आ करी यमुक थुगाकी हाय रोय बा चल चल चल चल चलो थेंगी नि थुगाय रो चलो हे मिंगजेन याउ दो उपुदो मदु दिना खु थिंजे लुनु को योपी याम दना ना खु तो मु छोक रे हो सा यो नि
0: तीन करेम न बे वानी चिंती हुएं तो ना इमान अब यूट्यूबर फेसबुक क्रिएटर सिंह ने इसी वो आईफोन पाई तब की उसी पीत रहा है जी कहीं तक खंभी

0: आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी ने पाव पजरी आहन बड़ा मरु इब पाव मुख्यमंत्री इमनाम खेमसा नहरी सोशल मीडिया बुला न सिजिन बगी महुत मसिबु दायित्व लै न सिजिन दुना मियाम दा अचुम बखंग न बमदी नुंची सान प पुरक न बहु नसी मुख्यमंत्री इमनाम खेमसा न सोशल वेलफेयर विभाग न पखली बथबक थोरम सिंह नसी हन यंग सिंह क्रे लौ पंथा यौर बसु मणिपुर की जिला खरद नोंग मरांग काइन सुदो बदगी लौ पान पे यातन लैदी केंद्रीय ngaksel mantri rajnath singh na hairi lebagasigi ngaksel gi mapangal kankhadana ba hona bada mapangal kanba seminar lama semkat pagi tangai fatabalai amishu major general dhiraj se nak ngasidagi bharat lanmi gi makko koire मुख्यमंत्री इमनाम खेमचान सिंह ने हरी सोशल मीडिया पुला ने सीजन अब की महुत्त मसी बुधाई तले ने सीजन अतुना मियाम दा अच्छम बखंगा ने बाम दे नुंगसी साना बा पुरक ने बहुत नसी मालिम की सोशल मीडिया नुमित कमरी लेना ना मुख्यमंत्री ने पी बा महा की पाउचेल दहाई सोशल मीडिया की कुतांग दा तुंगा तुंगा बकांग लुप सिंह पाउ फाउना हंदुना मदी ज्ञान लोक सिंह पिथोक पिसिन तंगना तुना खुनाई बु अपमा माइकी दा पुरक ने बहुत नसी मुख्यमंत्री इमनाम खेमचा ने सोशल वेलफेयर विभाग ने पाखली बैठक धोरम सिंह असी हन यंग सिंह क्रे मंत्री पुखरी तले ब न्यू सिविल सेक्रेटरीयत विभाग असे की कमिश्नर हौबम रोसिता डायरेक्टर शेख अब्दुल हकीम अमसुंग मकोक थोंगपा ऑफिशियल सिंह कियाउना पंगतोकी ब मिफम अतुदा विभाग असे ने पाखली बैठक धोरम सिंह की मतांग द वरी सनकी मिफम अतुदा मामा ओबी सिंह मति अंगांग सिंह सोशल सिक्योरिटी पेंशनस मीमा नत्रब मियो सिंह द मतेंग पीबा स्कॉलरशिप पीबा याउना कुनाई सिट सोतन हिंगली ब कांगलुप सिंह द सरकार न पाखलीबा याई फथरांग सिंह की कानब मतम सान फंगन बकी मतांग द सु कुपन खनकी मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन थुमलिप तिनिंग फम मोन छांगन लुचिंग ब मिहुत कांगबो अमना मुख्यमंत्री इमनाम खेमचान गंगसी महा की सेक्रेटरी त उनखरे उनबाचुद कमीशन असिन मथौ पांगथोपद थेंगनारीबा खुदोंसादब कयागी मथांगदा मुख्यमंत्री द पौदोंखी मुख्यमंत्री नसु मडी लेनबा प्रोविजन सिंगकी मतुंग इना कमीशन असिन थेंगनारीबा खुदोंसादब सिंग निंगतेने यंगसनगनी हाइना थाजब पिकी अमरुमदा मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के चेयरमैन तुंगगाय मैथ्यू डोंगमैन लुसिंगबा मिहुतकांगबो अमगसु मुख्यमंत्री ग उनखी राज्य असीद लेरीब शेड्यूल ट्राइब्स की याई फथौरंग कमरी लेनब वाफम सिंह अमदी कमीशन असी निंगथी न मथौ पांगथोंना बगी मतांगदा मिफम अतुद कुमन खनखी हंदक्त भारत सरकार ने वीर चक्र मना पीदुन इकाई कुमनब उलखरबा मणिपुर के इंडियन एयर फोर्स दा स्क्वाड्रन लीटर ओइना थबक दौरीब रिजवान मालिक दा मुख्यमंत्री ग उनखरे उनबतुद मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंधु दा थौना लेन मथौ पांगथोकीबा रिजवान मालिक पु थगत फुंगदोकी राज्य की फॉरेस्ट विभाग ने सिंधु न हम्बुतरा चारे सुब वन महोत्सव पालन थौरम हयेंग इम्फाली जिला के सिंखू मैया लेकाई कम्युनिटी हॉल द हौदक लगनी थौरम जी फॉरेस्ट विभाग के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अनुराग बाजपाई सरुक यागनी थौरम असी कमेटी लेना उजारा थाबगी थौरम अमसु पंगतुकनी केंद्र द एनडीए सरकार ने शासन पायरप सही तरह निथोई सुरक्ष पगमरी लेना आकाशवाणी इम्फाल की ई पाकांगना टैक्स रिफॉर्म साइब हिरम खन नई नगे थौरम अमांग पुंग तरह मिनट यांखद संगाई चेनल संदोकनी थौरम राज्य की जी एस टी सुपरिटेंडेंट अरामबम धनेश्वर आकाशवाणी इम्फाल की ई पाकांगू की डेस्क एडिटर देविका सिंथांग उन्ना साबगी थौरम ताब फंगी थौरम हयें अयु पुंग तरह आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चेनल ताब फंगी पाउगी मरक थना अत्यंत ब्रेक अमा
1: अय मामा मामा अय कदोरे पेरी पेरी
2: ओना सानु पीसे अफबन नर्सिंग कॉलेज ने अदम हाई लेले अस अय तो फंग
1: खंजे रे खुदा अय हले इसी नॉट एओसी द लेबर राज मेडिसिटी नर्सिंग इंस्टीट्यूट के निदा
2: राज मेडिसिटी दा
1: फोर ईयर डिग्री कोर्स बीएससी नर्सिंग नतनगा लेरे दी से पंगोवे वाले के अखोय मिमचादी सी सु क्वालिफाई होय रेदना लेहुरी से स्मार्ट क्लासरूम अदगे हॉस्टल लाइब्रेरी लैब लोइना फुल्ली एयर कंडीशन एडवांस टीचिंग मेथोडोलॉजी टिप टॉप
2: पीडी
1: याम रीजनेबल होय पी नेमी याम हंगरेदा
2: हाय
1: बेमा मिमचा लाओ हे राज मेडिसिटी नर्सिंग इंस्टीट्यूट चलु से लाओ ने नंग सुलु से लो लाओ ने
3: एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ हेल्थ केयर लीडर्स राज मेडिसिटी नर्सिंग इंस्टीट्यूट
4: Department of Information and Technology na miyam ki damak kuzarakli e-seba Manipur.
5: Certificate tantok pagi, document lok tok pagi, employment exchange ki service sing, ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ
4: ꯃꯦꯔꯤ ꯄꯍꯆꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯥꯙꯥꯔ ꯑꯣꯊꯦꯟꯇꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯣꯒꯤꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯗꯤꯖꯤ ꯂꯣꯀꯔ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯂꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ
5: ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯃꯦꯟꯠ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯎꯃꯪ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ
4: ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ AI ꯆꯦꯠꯕꯣꯛ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯋꯥꯠꯁꯑꯦꯞ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯐꯣꯟꯗ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯂꯥꯛꯍꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ
5: ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯒꯚꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯛꯁꯤꯜꯍꯜꯂꯤꯕ
4: ꯏ ꯁꯦꯕꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ
0: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯂꯧ ꯄꯟꯊꯥ ꯌꯧꯔꯕꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯤꯂꯥ ꯈꯔꯗ ꯅꯣꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯨꯗꯕꯒꯤ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯖꯤꯂꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯛꯅꯔꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯃ
6: ꯉꯁꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ 30 ꯏꯉꯥꯒꯤ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥ ꯌꯧꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯀꯣꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯨꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯏꯉꯥ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯉꯦꯟ ꯊꯥ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯏꯉꯦꯟ ꯂꯥꯏ ꯆꯨꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯉꯥ ꯊꯥꯗ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯦꯡꯅ ꯂꯧ ꯄꯥꯜꯂꯕꯗꯤ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯅꯤꯡꯂꯕꯁꯨ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯛꯄ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯒꯤ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯄꯤꯅꯣꯏ
0: ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯤꯇꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯗꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯑꯀꯥ ꯀꯔꯥꯎ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯅꯆꯤꯡꯕ ꯖꯤꯂꯥ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯒꯥ ꯃꯤꯆꯝ ꯇꯔꯨꯛ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯆꯉꯥꯡꯒꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯐꯣꯔ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯡ ꯐꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔꯗ ꯈꯨꯖꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯁꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯖꯌꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯂꯥꯟꯄꯨꯡꯒꯤ 17 ꯁꯨꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯣꯡꯈꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯦꯁꯟꯁꯇ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯅ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯟ ꯏꯟꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯦꯞꯇꯤꯁ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯌꯣꯟ ꯅꯒꯥ ꯕꯦꯞꯇꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯐꯣꯔ ꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯌꯦꯛꯄ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯕꯤꯚꯥꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯀꯣ ꯆꯪꯈꯥꯏ ꯀꯨꯂꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯂꯣꯌꯣꯟ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥ 9 ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯡꯀꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯋꯥꯇꯔ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯁ ꯇꯦꯡꯛ 2 ꯉꯁꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯇꯤ ꯕꯣꯂꯣꯟ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯖꯅꯥꯊ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀꯤ ꯕꯗꯣꯗꯔꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯖꯅꯥꯊꯅ ꯍꯥꯏ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯁꯤꯞ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯑꯦꯕꯜ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯩꯕꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯒꯅꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯃꯨꯛ
7: Diamonds Project Department of Pathology RIMS Imphal na breast amasung lung cancer na narab patient sing gidamakta free molecular test ki khodong chaba pijari hairiba test sing adudi breast cancer gina ERPR HER2NOE amasung KI67 lung cancer gina EGFR mutation test amasung ALK ROS1 PDL1 IIC test testing asigi matengna cancer layang bada amasung targeted therapy da chawna mateng oigani akupamarul gidamak diamonds project department of pathology rims tatanabio
0: Akispani Imphal dagi pau tabidi Major General Dhiraj Sen ngasi dagi Bharat Lanmi ki mako oide nauna Lanmi ki mako oiraba General Dhiraj Sen da phammadu khuji naraduna General Dibedin hai Bharat Lanmi ki chinpham da sahi nipu hena thabak dor pa asida mhangna chautuk jaba poi magna hai General Sen asi haitoi ching toiraba Lanmi amasung lujing ba amani magna lujing lingai matam da Bharat ki Lanmi sing khena chakolakani hai bagi thajabachu mhangna phongdokhi Bharat Lanmi ki makok General Upendra Dibedi na hairi Bharat Lanmi ki sakti asi lanai mi amak khakta dagi natte masidi Lanmi Singh Commander Singh Lanmi dagi pothakraba Singh makoi gi imung manung amadi leibak asi gi miyam ki loinai draba thajaba du dagi lakpani Sarkar na Good Train Services Tax Appellate Tribunal da appeal tobagi matam athang thagi kuntha matoi phawba sangdokre Sel tu mantralai na hai mamang sahi gi September 8 da thoki ban notification da ngasi asi appeal tobagi aroi banumit oiki bani Tax thi bamiyo singna makhoi gi appeal gi aroi banumit ngai be toktana mangjongna ne thidokna basu Sarkar na appeal tawdi Petrol amasung diesel yon ba amadi yenthokpa da matam pharagi oina regulatory thaurang sing sa na halam badu lepna ba sarkar na warep lokde petroleum amasung natural gas mantralay na hai matam kharagi oina public sector oil marketing companies sing ge retail outlet sing da motor spirit amasung high speed diesel de thamnam ba temporary regulatory adu haiyang dagi sana radoi mantralay na hai nongsop asia ki watoki yenglaga retail outlet sing amadi darkar leba industrial institutional amasung commercial consumer singda customer

हम भी आप लोगों के प्यार को बिल्कुल सलाम करते हैं. आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम कुल चैनल पर सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. मैं हूं आपके साथ आप ही की दोस्त रितिका. तो दोस्तों ये खूबसूरत सा गीत गाया अलका याग्निक ने और फिल्म जो कि 1993 में गुमराह फिल्म और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत.

भाई प्यार तो जितना मिले उतना ही कम है, आप भी मानते हैं ना, तो आप भी हमें यूं ही इतना प्यार देते रहिएगा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी जो गीत आपने सुना सलमान खान और रेवती पर फिल्माया ये गीत, इस गीत को आवाज दी चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने, और ये फिल्म 1991 में आई लव। आनंद मिलिंद का संगीत और इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने।

भाई हमें पता है कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और यूं ही अपना प्यार हमें देते रहिए. और हर श्रृंगार में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे फिर से मुलाकात होगी गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम में. और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President, Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow, on the eve of the nationwide rollout of VBG Ramji Act 2025. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added that the enhanced guarantee of the 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth shouldn't work only for their own progress but also strive to uplift the weaker section and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president urged a student to become agent of the social transformation, saying education should go beyond securing employment and to strengthen society, culture, tradition and economic progress. The Indian Railways will launch three projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. The Railways has approved the doubling of over 44-kilometre Mansi-Saharsa section of East Central Railway at a cost of 499 crore rupees. It will augment line capacity, improve operational efficiency and cater to the growing demand for passenger and freight movement in this important route. The Railways has also sanctioned a project for the replacement of relay-based interlocking with electronic interlocking at 27 station or cabin on the high-density network and highly utilized network route of Asansol Division of Eastern Railway. The special intensive revision of electoral rolls has begun in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra today. As part of the exercise in Delhi, over 13,000 booth level officers will visit every household till the 29th of next month to distribute a pre-printed enumeration form in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. The U.S. Supreme Court has struck down President Donald Trump's executive order aimed at ending birthright citizenship, reaffirming the long-standing interpretation that nearly everyone born in the United States is automatically granted U.S. citizenship. In the FIFA World Cup 2026, the match began Ivory Coast and Norway in underway in Texas, United States. And that's the end of the news bulletin.

रफू चक्कर मूवी का आपने ये गीत सुना। शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाज, गुलशन बावरा का लिखा ये गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल जिसको आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम आपका अपना मनपसंद गीत मेरे मनमीत।
1: ओहो अरे कोई सांस तो छेड़ो झुका के सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू।
2: नहीं नहीं नहीं भाभी ऐसे नहीं एक्टिंग करके बताओ।

0: ऐसा क्या?
1: अब तुम करके दिखा, कैसे बोलोगे?
2: How do you do?
1: हाँ, how do you do?
2: I love you.
1: ओहो, I love you इतने जल्दी नहीं रे बाबा।

0: बड़े।
1: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा। खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
0: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
2: ऐसा क्या?
0: हाँ,

तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। Join Indian Navy.

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेले
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे
0: हाँ समझे।

तो दोस्तों गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उच्च शिक्षा विभाग सचिव विनीत जोशी को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड, उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 पहली जुलाई से प्रभावी नहीं रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। दो दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस साल के सम्मेलन का विषय विकसित भारत 2047, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सक्षम डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस है। नीति आयोग ने पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विकास को गति देने पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की और इस पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में नियमों के सरलीकरण, व्यावसायिक सुगमता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और देश के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने की भविष्य योजना प्रस्तुत की गई है। फीफा विश्व कप में अमेरिका के टेक्सस में आइवरी कोस्ट और नॉर्वे के बीच राउंड ऑफ 32 का मैच चल रहा है। नॉर्वे ने पहले हाफ के खेल में एक गोल की बढ़त बना ली है। उसकी ओर से एंटोनियो नूसा ने खेल के 39वें मिनट में गोल दागा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi hold a telephonic conversation with the Iranian President, Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल. समय हुआ है 12:11 और 20 सेकंड. मैं हूं आपके साथ अंजू और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिकंधा. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. और हमेशा की तरह शुरुआत कुछ अल्फाज के साथ. ये रात मुझसे बहुत कुछ कहती है, ये रात मुझसे बहुत कुछ कहती है. तुम्हारी यादों की लहर आंखों में बहती है. दुनिया सो जाती है चैन की नींद, मगर एक तन्हाई ही है जो रात भर मेरे संग जागती रहती है.

मैं चाहती हूँ ये साथ रहे तेरा मेरा सदियों तक यूं ही, जैसे चांद का नाता है तारों से हर कहीं। बदल जाए चाहिए पूरी कायनात मगर तू रहे मेरे पास और मैं तेरे पास यूं ही।

मैंने चुरा लिया है मन कुछ इस अदा के साथ, मैंने चुरा लिया है मन कुछ इस अदा के साथ कि अब धड़कनें चलती हैं बस तुम्हारी सदा के साथ।

धूप तेज हो तो मैं आंचल बन जाऊंगी, धूप तेज हो तो मैं आंचल बन जाऊंगी, तुम्हारी हर राह में मैं छाया बनकर साथ निभाऊंगी।

समय हुआ 12:32 और 45 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा। अंजू के साथ आप हैं इस खूबसूरत सफर पर।

चेहरा तुम्हारा जैसे कोई ताज़ा गज़ल हो, चेहरा तुम्हारा जैसे कोई ताज़ा गज़ल हो, तुम्हें देखकर हर पल नया तराना गुनगुनाता हूँ मैं।

मेरे अरमानों को पंख तुम्हारी मोहब्बत ने दिए हैं, मेरे अरमानों को पंख तुम्हारी मोहब्बत ने दिए हैं। देख लो अब जहां भी जाओगे मुझे अपने साथ पाओगे।

दोस्तों, एक घंटे का इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है. अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार. अगले घंटे यानी 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी. सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने

0: महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने आज से आरंभ हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क की दरें संशोधित की हैं। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरों में पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है, जबकि डीजल पर शुल्क अब 14 रूपये से घटकर 8.50 रूपये हो जाएगा। विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 12.50 रूपये से घटकर 7.50 रूपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए स्वीकृत पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि उसका 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम अभी भी एक प्रयोग है, जिसका प्रभाव अगले वर्ष तक स्पष्ट हो जाएगा। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट पूरी तरह गलत है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ मीडिया खबरों में एथेनॉल आवंटन के बारे में तेल विपणन कंपनियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका संबंधी कार्यवाही में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अटॉर्नी जनरल के बयानों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। उच्च शिक्षा विभाग सचिव विनीत जोशी को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। नॉर्वे ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के अगले दौर में जगह बना ली है। नॉर्वे के लिए एंटोनियो नूसा ने 39वें और एरलिंग हालंद ने 86वें मिनट में गोल किया और टीम को जीत दिलाई। इस तरह नॉर्वे राउंड ऑफ 16 में पहुंचने में सफल रहा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi yesterday. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the PM stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen VBG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year.

दोस्तों समय हुआ है 1:11 और 13 सेकंड। मैं हूँ अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूँ गीत सुहाने। इस घंटे भी आप सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत, तो रहिए मेरे साथ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. दुनिया भर की नजरों से छुपा कर रख लो मुझे, दुनिया भर की नजरों से छुपा कर रख लो मुझे, उम्र भर जीना है मुझे तेरी इन निगाहों के साए में.

तुम आए तो बहार आ गई इस सोने जिंदगी में, तुम आए तो बहार आ गई इस सोने जिंदगी में, अब तो मेरी हर सांस तेरी मोहब्बत से महक

तुम्हारा मेरे जीवन में होना एक खूबसूरत शायरी सा लगता है. तुम्हारा मेरे जीवन में होना एक खूबसूरत शायरी सा लगता है. हर एक लम्हा जैसे मोहब्बत की कोई नज्म सी बुनता है.

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूं अंजू आपके साथ और समय कह रहा है कि 1:28 और 10 सेकंड हुए हैं.

मोहब्बत का इजहार जरा हौले से करो, ये दुनिया सुन लेगी। मोहब्बत का इजहार जरा हौले से करो, ये दुनिया सुन लेगी। क्योंकि धड़कनों की सरगोशी भी यहां खबर बन जाती है।

नजरें मिली तुमसे और होश खो बैठे हम, नजरें मिली तुमसे तो होश खो बैठे हम, न जाने कैसा ये जादू तुम्हारी इन आंखों ने कर दिया।

तेरी निगाहों की इनायत कुछ इस तरह हुई हम पर, तेरी निगाहों की इनायत कुछ इस तरह हुई हम पर कि हम खुद को ही भूल गए तेरी मोहब्बत के सफर पर।

तुम्हें देखना जैसे खुदा की इबादत करना है, तुम्हें देखना जैसे खुदा की इबादत करना है। न जाने कितनी शिद्दत से उसने तुम्हें तराशा होगा।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 2:10 पर रात सुरमई लेके एक बार फिर से आपके साथ रहेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजकेशन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजकेशन ने श्री मोदी को

पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान के अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने आज से आरंभ हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क की दरें संशोधित की हैं। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरों में पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रूपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है, जबकि डीजल पर शुल्क अब 14 रूपए से घटकर 8 रूपए 50 पैसे हो जाएगा। विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 12 रूपए 50 पैसे से घटाकर 7 रूपए 50 पैसे कर दिया गया है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। उच्च शिक्षा विभाग सचिव विनीत जोशी को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। फिल्म और रंगमंच की जानी मानी शख्सियत विजया मेहता का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी विजया मेहता ने अपने थिएटर ग्रुप रंगायन के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई भाषा, नया नजरिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूक दृष्टिकोण प्रदान किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू होगी। पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट के रिवर साइड ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होगा। आयरलैंड से 2020 श्रृंखला 2-0 से हारने के बाद भारतीय टीम इस श्रृंखला में उतरेगी। फीफा विश्व कप में नॉर्वे ने अमरीका के टेक्सस में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 से फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से होगा। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने कल वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों समय हुआ है 2:11 और 3 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

इबादत की तरह पाक है ये एहसास-ए-इश्क इबादत की तरह पाक है ये एहसास-ए-इश्क अगर ये खता है तो ये खता बार-बार हम करेंगे

किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, लेकिन जब ये मोहब्बत किसी से पहली बार हो तब क्या होता है? तब होता ये है कि ना नींद आंखों में ठहरती है, ना दिल को कहीं सुकून मिलता है, ना नींद आंखों में ठहरती है, ना दिल को कहीं सुकून मिलता है, जब पहली बार मोहब्बत का यह हसीन फूल दिन में खिलता है।

प्यार का पहला एहसास जैसे रूह में उतरी कोई ताजी हवा है। प्यार का पहला एहसास जैसे रूह में उतरी कोई ताजी हवा है। ये दिल समझ ही नहीं पाया कि ये कोई जादू है या फिर कोई दर्द-ए-शिफा है।

कभी देखा ना था खुद को इस आईने में, खुद को खोते हुए. कभी देखा ना था खुद को इस तरह आईने में खोए हुए. ये पहले इश्क का असर है कि हम जाग तो रहे हैं लेकिन सोए हुए हैं.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देशभर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणाली पूरी तरह तैयार है और अभी चल रहे कार्य बिना किसी रिकॉर्ड के जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को

द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। दो दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के पोत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस कवरत्ती और आईएनएस शक्ति ने थाईलैंड के सट्टाहीप बंदरगाह की अपनी निर्धारित यात्रा पूरी कर ली और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी अगली परिचालन तैनाती के लिए रवाना हो गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत की निरंतर सहभागिता का हिस्सा है और इससे भारत और थाईलैंड के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी मजबूत हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगातार बारिश से इस क्षेत्र में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। श्री सिंधिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने बचाव, राहत और पुनर्वास सहित जमीनी स्थिति का जायजा लिया और लोगों के जीवन की रक्षा तथा सामान्य स्थिति जल्द बहाल करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। फीफा विश्व कप में नॉर्वे ने अमेरिका के टेक्सस में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

रोका कई बार मैंने मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। मुमकिन नहीं कि सब कुछ मिल जाए इस एक जिंदगी में, मुमकिन नहीं कि सब कुछ मिल जाए इस एक

0: जिंदगी में जितनी चाहते हैं उसमें तो कई जिंदगियां लगेंगी पर चाहत यही है और आगे भी रहेगी कि पूरी हो सभी चाहते इसी एक जिंदगी में 3:18 हो चुके हैं सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अलचित के साथ
1: सा देखा है
2: जरा मैं भी सुनो
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे नहीं

0: मैंने भी ख्वाब सा देखा है।
1: कहो, तुम भी कहो।
0: खुद पे इतरा तो न जाओगे?
1: नहीं, खुद पे नहीं।

मैंने एक ख्वाब सा देखा। रहते हैं उदास बिना किसी बात के, रहते हैं उदास बिना किसी बात के, उदासी का ये मंजर मेरी समझ में नहीं आया। उलझे हैं खुद ही बेकार की उलझनों में, उलझे हैं खुद ही बेकार की उलझनों में, वरना किसी ने मुझे कहां सताया। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:24 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

बने रहने दीजिए कुछ अरमान अधूरे भी इस जिंदगी में बने रहने दीजिए कुछ अरमान अधूरे भी इस जिंदगी में सभी अरमान पूरे यहां कौन ही कर पाता है हो गए जो पूरे सारे अरमान हो गए जो पूरे सारे अरमान तो फिर जिंदगी जिंदगी जीने का मजा कहां ही आता है 3:30 हो चुके हैं सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही

फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो तीन बजकर 36 मिनट हो चुके हैं आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित

कर लीजिए अपने शब्दों में अब कुछ कटौती ही सही कर लीजिए अपने शब्दों में अब कुछ कटौती ही सही ना जाने कब रिश्तों में कटौती शुरू हो जाए पता नहीं आजकल किसी के मिजाज का कुछ पता नहीं आजकल किसी के मिजाज का कुछ कौन कब किस बात का बुरा मान जाए

जीना है जिंदगी सुकून से तो दिल में अरमान थोड़े कम ही रखिए। लेना है सफर का मजा तो साथ में सामान थोड़ा कम ही रखिए। कब तक उठाते रहोगे ख्वाहिशों के बोझ को अपने कंधों पर तुम? कब तक उठाते रहोगे ख्वाहिशों के बोझ को अपने कंधों पर तुम? ख्वाहिशों को छोड़कर सुकून को अपने साथ में रखिए। बीत ही जाएगी ये जिंदगी बड़े आराम से तुम्हारी, बीत ही जाएगी ये जिंदगी बड़े आराम से तुम्हारी, बस अपने साथ फिजूल के बवाल थोड़े कम ही रखिए। 3:47 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश भर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणाली पूरी तरह तैयार है और अभी चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के पोत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस कवरत्ती और आईएनएस शक्ति ने थाईलैंड के सट्टाहीप बंदरगाह की अपनी निर्धारित यात्रा पूरी कर ली और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपने अगले परिचालन तैनाती के लिए रवाना हो गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत की निरंतर सहभागिता का हिस्सा है और इससे भारत और थाईलैंड के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी मजबूत हुई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगातार बारिश से क्षेत्र में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। श्री सिंधिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने बचाव, राहत और पुनर्वास सहित जमीनी स्थिति का जायजा लिया। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन, दीव और राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा विश्व कप में अमरीका के न्यूजर्सी में फ्रांस और स्वीडन के बीच राउंड ऑफ 32 का मुकाबला चल रहा है। फ्रांस ने 2 गोल की बढ़त बना ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi yesterday. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the PM stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VBG Ramji Act 2025, will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. The 29th National E-Governance Conference will be held in Jaipur from today. The two-day conference will take place at the Rajasthan International Center and is being jointly organized by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, the Ministry of Electronics and Information Technology, and the Government of Rajasthan. The theme of this year's conference is Viksit Bharat 2047, AI-enabled, data-driven, and secure digital governance. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma will inaugurate the event. A major change in Uttarakhand's madrasa education system will come into effect from today. Under the new arrangement, the Uttarakhand Madrasa Education Board will be abolished and all minority educational institutions in the state will be governed under a new framework. From July 1st, the Uttarakhand Madrasa Education Board, the Uttarakhand Madrasa Education Board Act 2016, and the Uttarakhand Non-Government Arabic and Persian Madrasa Recognition Rules 2019 will cease to have effect. The state government has introduced a new system under the Uttarakhand Minority Educational Institutions Act. Under the new framework, the Uttarakhand State Minority Education Authority will be responsible for granting recognition to minority educational institutions, monitoring their functioning and ensuring academic quality. The new system will cover educational institutions of the Muslim, Sikh, Jain, Christian, Buddhist and Parsi communities. Uttar Pradesh government has decided to hold a separate teacher eligibility test for in-service teachers. The decision was taken at a review meeting for UPTET 2026. During the meeting, Chief Minister Yogi Adityanath directed the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission to conduct a separate TET for teachers already in service. He said, since the Supreme Court has made the test compulsory,

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 4:11 हो चुके हैं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा

रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है इंतजार तो हमें उस सुबह का रहता है जिसके साथ आज का दिन कुछ नया होगा तो आइए आने वाली सुबह के इस इंतजार के साथ सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा जिसमें मैं हूं आपके साथ आपका ही दोस्त एक बार फिर से अर्चित

दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। धीरे धीरे देखना खुद को सुलझा हुआ ही पाओगे। 4:18 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

लता मंगेशकर जी की आवाज में मेरा साया साथ होगा। उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर, उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर, पर नीचे अपनी जमीन का भी ख्याल रखना। आना ही पड़ेगा एक दिन तुमको जमीन पर नीचे, आना ही पड़ेगा एक दिन तुमको जमीन पर नीचे, सारी जिंदगी तो कोई हवा में नहीं रहता। 4:25 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

बहुत ही प्यारा सा गीत लता मंगेशकर जी की आवाज में मुझे तुम मिल गए हमदम। चार बजकर 36 मिनट हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

एसटी बर्मन वॉज वेरी ग्रेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन. ज्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पर बैठ के कंपोज करता था. सुबह 8 बजे फोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं.

हासिल तो बहुत कुछ हुआ है इस जिंदगी से हमें हासिल तो बहुत कुछ हुआ है इस जिंदगी से हमें पर हम रोना उसी का रोते हैं जो मिला नहीं और निकल कर देखा जब घर से बाहर और निकल कर देखा जब घर से बाहर तब पता चला जो हमें मिला है वो बहुतों को आज तक मिला ही नहीं। 4:43 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

4:59 हो चुके हैं अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश भर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमेरिका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की ये उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला यह सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के पोत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस कवरत्ती और आईएनएस शक्ति ने थाईलैंड के सट्टाहीप बंदरगाह की अपनी निर्धारित यात्रा पूरी कर ली है और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी अगली परिचालन तैनाती के लिए रवाना हो गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत की निरंतर सहभागिता का हिस्सा है और इससे भारत तथा थाईलैंड के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी मजबूत हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन, दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। कल तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा, झारखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर में मूसलाधार बारिश की आशंका है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व फुटबॉल कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह बना ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen VBG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. The VBG Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MNREGA 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi is arriving in New Delhi today on a three-day visit to India. This marks her first official visit to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with PM Modi. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi had a telephone conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian yesterday. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has discussed strengthening India-Greece economic ties by enhancing cooperation in financial services, fintech, digital payments and emerging technologies. He met Greek Minister of Economy and Finance Kyriakos Pierakakis in Greece. The two sides also explored avenues for deeper collaboration between Indian and Greek institutions and businesses to foster shared prosperity. Mr. Goyal also met Greek Minister for Infrastructure and Transport, Christos Dimas, discussing enhanced India-Greece cooperation across infrastructure, transport connectivity, the maritime sector, aviation, and sustainable mobility. He looked forward to deepening collaboration to build resilient supply chains and further strengthen connectivity between India and Europe. Uttar Pradesh government has decided to hold a separate teacher eligibility test, TET, for in-service teachers. The decision was taken at a review meeting for UPTET 2026. During the meeting, Chief Minister Yogi Adityanath directed the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission to conduct a separate TET for teachers already in service. He said, since the Supreme Court has made the test compulsory, serving teachers should also be given an equal opportunity for employment and promotion, ensuring no teacher faces difficulties merely due to a lack of opportunity. The TET exam is scheduled to take place from Thursday until 4th July at 955 examination centers in 60 districts of the state. Around 20 lakh aspirants are expected to take the exam, of whom 1.85 lakh are teachers. In view of a large number of candidates reaching centers from various districts of the state, the Chief Minister said assistance should be provided at railway stations, bus stands and major transport hubs. Prime Minister Narendra Modi interacted with several ministries and secretaries at Seva Teerth in New Delhi yesterday. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the PM stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. India's men's cricket team will begin their five-match 2020 International Series against hosts England today. The opening match will be played at the Riverside Ground in Chesterley Street starting at 10 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 5:10 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

अब जीवन में जागना है तो एक नई उम्मीद के साथ ही जागिए। अब जीवन में जागना है तो एक नई उम्मीद के साथ ही जागिए। सिर्फ सोकर उठने को जागना नहीं कहते।

कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं फिर से एक बार आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम लता मंगेशकर जी की आवाज में गाए हुए एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

कमाने के चक्कर में कहीं इतना भी व्यस्त ना हो जाएं, कमाने के चक्कर में कहीं इतना भी व्यस्त ना हो जाएं कि कमाई तो हो जाए पर कहीं उसमें पूरी जिंदगी ना खर्च हो जाए।